0: एक्टिविटी जहां हम चाह रहे थे कि हमारे इंसाफ मिलना चाहिए और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने हमारे 5 लोगों की जान ले ली और मजबूरन निर्दोष 100 लोग से ज्यादा लोगों को जेल में रहना पड़ा।
1: सांसद जियाउर रहमान साहब हैं और जो सुहेल इकबाल साहब भी हैं वो संभल की जितनी भी आवाम है उनकी नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह से सियासी जो रहबरी करने वाले लोग हैं जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी साजिश के तहत उनका नाम डाला गया होगा, इसलिए कि जनप्रतिनिधि का जो काम है वो लोगों को राह दिखाना होता है ना कि उकसाना होता है। मैं समझता हूं कि अगर जनप्रतिनिधियों ने वहां के हालात को ना संभाला होता तो जो 4-5 लोग वहां पुलिस की गोली से मारे गए हैं न जाने और कितने मारे जाते।
2: With that, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आतेर मसाला।
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
3: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
5: कौन?
3: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
6: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
6: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
8: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
9: This location from Tel Aviv
8: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
10: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
11: The IR

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
3: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
4: हरियाणा।
3: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
4: डेढ़ महीने पे।
3: आपकी फैमिली है?
4: कौन?
3: बच्चे हैं?
4: 3 साल।
3: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
4: बहुत।
3: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
4: सिनेमा तक अलाउड।
3: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
2: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। He has tracked the pulse of power from Washington to Korea, witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
7: This location from Tel Aviv
5: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
8: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
9: The Ayatollah Khamenei is gone.
10: There has been a missile attack right behind me,
11: and we need to rush into a shelter.
12: Heading there.
13: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
5: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: talking with the student on their demands. So hopefully today the meeting will take place. The delegation of ministers will meet with the students and start their channel.
1: Right, but Raman, tell us, after nearly 2 weeks of protests, what are the students themselves saying on the ground?
0: Well, see, students are basically demanding to cancel the 14th JPSC exam and JSSC exam, which was conducted earlier by the state governments, and there were huge numbers of frauds in the results of JPSC, and that is why they are wanting to cancel the exam and want the CBI inquiry. They are wanting CBI to inquire this all case. Currently, the CID of state government is looking into this matter, but they want CBI inquiry. And they want a fresh commission of JPSC. They want all the members who is presently in the JPSC committee, they want to dissolve the JPSC committee as well and want a new JPSC committee, JPSC commission for the state in the Jharkhand.
1: Raman, as always, thanks so much. We'll of course keep in touch with you for regular updates through the course of the day. This political sparring comes even as the core issues raised by the protesters remain unchanged. For nearly 2 weeks, hundreds of students have accused the Jharkhand government of failing to protect the integrity of public recruitment and the examinations. And now the government strategy appears to be widening because the CID has made 5 more arrests in the alleged JPSC-JSSC recruitment irregularities case, taking the total number of arrests now to 19. At the same time, senior officials have reached the protest site with an offer of talks. And Chief Minister Hemant Soren, he has constituted a high-level committee to engage with the protesting students. We're told a delegation has been invited to his residence for further talks. Meanwhile, the BJP has also stepped into the political battle, with a delegation led by Babulal Marandi meeting the protesters and backing their demands. But the students remain firm on their core demands, as Raman highlighted. They want the 14 JPSC prelim examination cancelled, a CBI probe into recruitment examinations conducted over the past 7 years, and structural reforms in the state's recruitment process. Now, with the monsoon session that is beginning today, this is set to become the government's biggest political challenge inside the House in the Jharkhand Assembly session that kickstarts today, with the BJP backing the protesters and also preparing to corner the Soren government. Here are the crucial political reactions you need to listen to this morning.
2: Monsoon session of Jharkhand Assembly will start from today, but the agitation of students is still going on. As you can see, the numbers of students are sitting on the protest against the state government and demanding to cancel the JPSC 14th exam and hand over the case to the CBI. And they want a CBI proof in the all scam which have been done in the result of 14th JPSC yesterday. A delegation of officers also met with the students who sitting on the protest and demanding to cancel the exam. And government also made a committee of four cabinet ministers is in the delegation, one from Congress party, one from the RJD, and two of the ministers from the JMM. So these are the four ministers who will start a channel talk with the students who sitting on the protest. And today the meeting will take place between the students delegation and the delegation of the ministers. Yesterday CID also arrested many of the people who involved in the JPSC result scam. Also a close one of the ex-chief S. Khayante, Rakshak Singh, was also arrested by the CID. Total arresting is rises to 19, almost 19.
3: Yuva Shakti hamare apni shakti hai. Hum khud youth hain, hamare Mukhyamantri ji youth hain. Aur yuvaon ki jo peeda hai, humse behtar koi nahi samajh sakta. आंदोलन को भाजपा को चलना चाहती है और भाजपा के लोग वहां जा रहे हैं. हम लोग नहीं गए वहां क्योंकि हम
2: आज बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे जैसे पता था.
3: हम भी जा सकते थे, हम नहीं गए क्योंकि युवाओं की बात है ना. हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम जाएंगे तो फिर पॉलिटिकलाइज हो जाएगा. लेकिन भाजपा के लोग चले गए, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, बीजेपी को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था.
2: कोई बैक कर रहा है क्या इनको पीछे से?
3: भाजपा बैकअप है बीजेपी, हमें लगता है कि भाजपा बैकअप दे रही है और दो तीन गुट में है वहां पर.
4: प्रोटेस्ट वॉज नॉट स्टार्टेड. हेमंत सोरेन बीइंग द मुख्यमंत्री, बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड, ही ऑलरेडी इम्पोज्ड सीआईडी ऑन द एजेंसीज हु टुक द एग्जामिनेशंस एंड द एजेंसीज वर ब्रूटलाइज्ड बाय द सीआईडीज. दे आर फर्दर अरेस्ट ऑल्सो इन द कंडक्ट ऑफ द रेड. फर्दर द सीएम हैज वेरी करेक्टली सेड to all the MLAs, no one will be exempted from the procuration, and we will take any step to get it this very clear state into the mind of the workers and the bureaucrats of Jharkhand government that these types of negligency will not be tolerated. So now we have announced for our delegation. The delegation is very, very short in terms of the alliance government, and there will be few of the IAS officers also. Right now we are waiting for the timeline which has been given by the protesters. Once they assured us the time, then then our delegation will be going there. We'll have a fruitful discussion. Don't worry.
5: माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के सभी विधायक यहां पर बच्चों से मिलने आए जो लगातार 11 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं. आज उनकी बातों को हम लोगों ने सुनने का काम किया, विस्तार से उन्होंने बताया. और जिस तरह से जेपीएससी में कम मार्क्स लाने वाला बच्चा पास हो गया और ज्यादा मार्क्स लाने वाला बच्चा फेल हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पेपर लीक का मामला नहीं है, यहाँ नौकरी ही फिक्स का मामला है. यहाँ नौकरी बेचने का काम राज्य सरकार के इशारे में हो रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हो रहा है. तो उनका मांग है कि जेपीएससी 14th रद्द हो.
6: एनडीए घटक दल जो विपक्ष में है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में यहाँ आया था, छात्रों से मिला है, छात्रों को मुद्दों को सुना है, समझा है. 12 दिन से जो ऐसे बरसात में यहाँ कष्ट कर रहे हैं अपने न्याय के लिए, मांग सीबीआई जांच के लिए, सरकार को जेपीएससी जैसे सभी मूलभूत सुविधा सुधार के लिए, यही आश्वासन लेकर के यहां से छात्रों को लेकर के निकले.
1: Well, the Jharkhand students' protest is gathering momentum after days of satyagraha and an indefinite hunger strike. Protesters have also taken out a massive Tiranga Yatra through the streets of Ranchi, saying their fight is for the future of the state's youth and for a transparent recruitment system. My colleague Ankit Tyagi has been on the ground tracking the march and the message the students are trying to send. Take a look at the report he sent across.
7: Since 25th of July, the students in Ranchi have been protesting against the alleged examination paper leak of the Jharkhand Public Service Commission and the Jharkhand State other services, examinations that were being, that the allegation is the paper was leaked. The OMR sheets have also been made public in many cases. Today, all these students are taking out a Tiranga march here, and it is raining. It has been raining continuously for the last few hours, and that has not deterred the students. At 4 o'clock, there was an initiation by the government. They said that they would want to, in fact, speak to these students. But the students say that there should be, that the conversation should be at a neutral place. The government should make that initiative, not at the chief minister's office, but at a neutral place where the students can come and speak. For them, there are many of these students, those who have been on hunger strike as well. And tomorrow is when the assembly session here in Jharkhand is going to begin. And while there is going to be political pressure as far as Hemant Soren, the chief minister, is concerned, the students say that they will continue their protest till the time not only are these papers, there is cancellation, but a CBI probe as well. So far, a CID probe is going on as far as these protests are concerned, and 11 people have been arrested. The chief minister, who is also the education minister, says that the government is willing to listen, but at this moment, it has only come today. How does it pan out in the days to come? That is going to be an important question. But come rain or anything else, these students are determined that they will continue their protest till the time. We are now, the protest march is, the Tiranga march is getting back to the stadium where this protest has been going on for the last few days. I will show you exactly how this situation inside is for you to get an understanding, because like with every other protest, of course there are allegations that this becomes political and so on and so forth. Thankfully, the government has not dismissed them by saying that it is a political protest. Now this As soon as you enter the stadium, what you see behind me here is where Mr. Mahato is sitting on a hunger strike. He has been on this hunger strike for the last 4 days. Today he spoke to Sonam Wangchuk as well. And this is, the entire protest has now been divided into two of these tents. One at the entrance where Mr. Mahato of the Jharkhand Krantikari Morcha, he is the leader of that Morcha, and he's been sitting on protest for that. You will see the kind of melee that is happening, a lot of people coming in from that protest site as well, and they have arranged this food and other things for the protesters, those who have continuously been standing here. This is where half of the protest is. They used to be together, but when the students felt that there is a lot of political interference, entire stadium, which has been a Krantikari sort of a stadium for many, many years, is seeing a protest where on one hand is Mr. Mahato. Of course, he's his own political outfit fought an election. He's demanding for the same demands as the students have been. Bahut bahut shukriya. Thank you so much. Kya naam hai aapka?
8: Nityam Jha.
7: You know, I was just walking and this gentleman just put his umbrella over my head. I just want to show you, this is the stage, the protest. This is where everything is being, in fact, more or less being controlled from. Shibu Soren, father of Hemant Soren, or a legendary figure as far as politics of Jharkhand is concerned. And you would all see, Bhagat Singh's picture there. You will see Birsa Munda. You will see Baba Saheb Ambedkar. You would also see B.R. Ambedkar. And there is Mahatma Gandhi as well. And that's where all these people say that they are drawing their strength. These are the students. Aap mein se kaun kaun abhi hunger strike par hai? Aap hain, aap hain. Aap charo log hunger strike par hain. This is the demand. यही मुद्दा है, यही demand है.
9: मुद्दा नहीं है सर, जो JSSC और JPSC में जितने भी एग्जाम में धांधलियां हुई है ना, सभी एग्जाम में CBI और ED की जांच करने की मांग चल रही है.
7: आपको लग रहा है कि 25
9: छोटा मुद्दा है, इससे बड़ी बड़ी मुद्दा है वहाँ पे है. इतना अंदर तक धांधलियां हुई है ना कि कोई नहीं बता सकता है.
7: कब से आप बैठी हैं भूख हड़ताल?
9: हम भूख हड़ताल कल से बैठे हुए हैं. इससे पहले 12 दिन तक यहाँ आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लड़की होके आंदोलन पे बैठे हुए हैं. वो हमको मजबूर किया गया है यहाँ आंदोलन पे बैठने के लिए.
7: हेमंत सोरेन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, आई मीन इफ यू आर वॉचिंग बाय एनी चांस दिस शो, लिसन टू हर्ष, बिकॉज दे बिलीव दैट इफ हेमंत सोरेन कम्स हियर, दैट एटलीस्ट शोज दैट द गवर्नमेंट इज सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ दीस प्रोटेस्टर्स.
1: वेल, 12 डेज इनटू द JPSC प्रोटेस्ट एंड 2 डेज इनटू द हंगर स्ट्राइक, Jharkhand students confronted Health Minister Irfan Ansari in a dramatic live face-off on NDTV. The students rejected attempts to politicize their agitation, insisting that they are fighting only for a fair recruitment process, cancellation of the disputed JPSC results, and a CBI probe. They in fact questioned the government's delay in responding, highlighted alleged irregularities in recruitment, and spoke about the uncertainty surrounding their future. Listen in.
10: Development hua hai. और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे प्रभारी के राजू सर ने आज एक आपात बैठक बुलाकर युवाओं से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक कमेटी का गठन कराया गया है, जिसमें 4 मंत्री भी हैं. तो जो बच्चे वहां पर हैं उनसे हमारी टीम वार्ता करेगी, उनकी जो भी मांगे हैं वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे. दूसरी बात, ये धरना में मैं देख रहा हूँ कि भाजपा के लोग जा रहे हैं. Why they will go? Who allow him? और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जो है इनकी नीति और नियत में खोट है. युवाओं का आंदोलन को कुचलना
11: चाहते, धरना है वो तो बच्चों का धरना है ना, उसको आप भाजपा का धरना क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड,
10: आज मैम
11: ये तो युवाओं का धरना है. पहले दिन से हम जब बात कर रहे हैं
10: भाजपा
11: तो मंच तो युवा संभाले हुए हैं, उसमें भाजपा का क्या लेना देना?
10: मेरी बात सुन लीजिए, कई भाजपा के लीडर आज वहां गए और हम लोग उसका रहे हैं.
11: एक सेकंड, एक बच्चा कुछ बोल रहा है. चंडी कुछ बोल रहे हैं आपसे.
12: सर, हम बोलते हैं कि हम लोग किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं. सर, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, हम लोग अधिकारी भविष्य बनाने आए हैं. ये झारखंड में सिर्फ कोयला नहीं जलता है, झारखंड में स्टूडेंट के भविष्य को भी जलाया जाता है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हम ना बर्बाद हो जाए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है. सर, हमारा एज जा रहा है, हमारा माता पिता परेशान है, कोई नेशनल कुछ कर पा रहे हैं इंडिया के लिए, सर माता इस ऐसा सिस्टम
11: क्योंकि इसको अगर आप पार्टी में बांट देंगे, इरफान अंसारी जी एक सेकंड, जस्ट कीप चंडी तिवारी एंड इरफान अंसारी ऑन स्क्रीन फॉर अ सेकंड, अगर आप इसको कह देंगे कि भाजपा के लोग जा रहे हैं वहां धरना, भाजपा ओवरटेक कर रहा है, नहीं, पहले दिन से ही यहां पर जो बच्चे हैं, जो सीबीआई की डिमांड उठ रही है, जो सरकार से बात करने की डिमांड उठ रही है, वो तो आम बच्चे उठा रहे हैं। अगर वहां पे लोग आ जा रहे हैं, भाई आप भी जंतर मंतर पर आ जा रहे थे ना, आपके नेता भी जा रहे थे, सपा के नेता भी जा रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा कि उनकी जो डिमांड थी वो नाजायज हो जाती है। इरफान साहब,
10: मैडम आपने
11: जब आप उसको बेवजह का नाटक बोलते हैं, तब तो फिर आप उसको एक राजनीतिक प्रिज्म से देखें।
10: मैम आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, मैं बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये दिल्ली का धरना है नहीं, दिल्ली में नीट का जो एग्जाम में पेपर लीक हुआ, ये लाखों लाख बच्चे प्रभावित हुए, भाजपा ने उन पर गोलियां चलाई, बच्चों को मारा, आपने देखा होगा वो दृश्य, मैं बता नहीं सकता। ठीक, अगर आप कंपेयर करें झारखंड की जेपीएससी की, तो मैम यहाँ पर 300 सीट है, मात्र 300 प्लस सीट है, इसको लेकर छात्र धरना पर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ। टू बी फ्रैंक मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ, गड़बड़ियां पाई गई, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई किया, एक्शन लिया मुख्यमंत्री जी ने, हमारे आज जेपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया गया है, कई लोग हिरासत में है, जांच चल रही है और निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी हमारी सरकार। आज बैठक में हमने अपनी बात को रखा, सीएम साहब भी थे, हमारे प्रभारी के राजू सर भी थे, हमने कहा कि हमारे बच्चे हैं वो लोग, आज बरसात में देखिए वो लोग भींग रहे हैं, उनकी जो भी मांग है हम लोग को जानना चाहिए, सुनना
8: भी
10: चाहिए,
8: हम लोग बात साथ में देख रहे हैं सर, अभी जी खड़े हो तो हम ये कहना चाहते हैं सर, छाता लेके ये देखिए हम लोग छात पे हैं,
12: आप क्यों नहीं आ रहे सर, आप
8: क्यों नहीं आ रहे, आप एक
12: बार आकर तो बात कर सकते हैं, रांची में कितना दूर है सर, आप रहते हैं, आ जाइए हमारे पास,
8: हम लोग को तकलीफ है तो सुनने की कोशिश कीजिए आप।
1: Meanwhile, Congress MP Imran Masood spoke exclusively to NDTV on the biggest political flashpoints of the student protests in Jharkhand. Listen in.
11: छात्रों से ही आप कह रहे हैं, छात्रों का मुद्दा सबसे बड़ा है आपके लिए, आप रांची क्यों नहीं जा रहे? अभी तो छात्र वहां पे अभी भी बैठे हुए हैं, आज के दिन वहां पर छात्र बैठे हुए हैं, आप उनके साथ मन साझा कीजिए।
13: हाँ बिल्कुल सही है, मैं अभी इसके बारे में जानकारी मैंने आज मुझे लगा कि उसके बारे में, क्योंकि ये काफी डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है, निश्चित रूप से हम कल तक इस पे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमारा जो
11: डाइवर्ट क्या है, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं ये बच्चे, तो 12 दिन से बैठे हुए हैं,
13: सुन लीजिए ना, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज और बच्चों के ऊपर गोली चलाना है, हमारा विषय बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज गोली चलाना, उनको
11: पर इमरान जी बच्चे तो बच्चे हैं ना, दिल्ली के बच्चे बच्चे हैं, रांची के बच्चे बच्चे नहीं,
13: तो बच्चों पर वहाँ लाठी चल गई क्या?
11: लाठी नहीं चली, पर वहाँ भूखे बैठे हैं,
13: लाठी चल गई क्या?
11: अरे उनकी नौकरियां चुराई जा रही
13: है, वहाँ लाठी चल गई क्या? देखिए मैंने
11: लाठी चलने पे ही आप उनके साथ जाएंगे?
13: नहीं,
11: उनकी नौकरी चुरा ली जाएगी, आप उनके साथ नहीं जाएंगे?
13: मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे कोई जवाब बहस नहीं कर सकता, क्योंकि हम पार्लियामेंट में पिछले 10 दिन से इतने लगे हुए हैं कि मुझे जानकारी नहीं पूरी प्रॉपर, मैं आज मुझे इसकी जानकारी लेनी है, क्योंकि मैं कई जगह से मुझसे सवाल हुआ, तो मैंने भाई मैं कल ही बात पर कहूँगा, आज इसकी पूरा का पूरा डिटेल लेता हूँ क्या है।
11: पर ये अजीब सी बात नहीं है कि आप हमेशा छात्रों के मुद्दे पर बात करते रहते हैं, आप कह रहे हैं कि छात्रों की तरफ हम खड़े हुए हैं, छात्रों की गूंज का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, पर जहां से गूंज सच में उठाई दे रही है, उठाई जा रही है रांची में, उनकी गूंज आपको सुनाई नहीं दे रही है? दिल्ली में तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ, प्रयागराज में कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ।
13: मैंने आपसे कहा ना कि हम पिछले 10 दिन से लगातार लगे हुए, इसलिए मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आज इसकी जानकारी जरूर लूंगा, और निश्चित रूप से कल को आपको बोलता हुआ दिखाई दूंगा, हम चुप रहने वाले लोगों में नहीं है,
11: क्योंकि वहां के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इसीलिए आप उनको एकदम एक तरीके से इग्नोर कर रहे हैं,
13: नहीं,
11: आप,
13: हम इग्नोर
11: आप सिर्फ जो ऑपोजिशन जो बीजेपी वाले शासित राज्य होते हैं वहीं पे आपको गड़बड़ी
13: दिखाई देती है। नहीं नहीं, हम तो छात्रों के ऊपर गोली चलाने के ऊपर है, आप छात्र एक बात बताइए, बच्चे के यहाँ गोली लग रही है शोल्डर के अंदर, पिस्टल की गोली, AK-47 से आप गोलियां चला रहे हो बिहार के अंदर, यहाँ पैलेट गन मार रहे हो, और पार्लियामेंट में आप बयान देते हो कि हमने गोली नहीं चलाई, मतलब ये कितना गलत बयान ही का काम हो रहा है, तो इसमें होम मिनिस्टर साहब नहीं जिम्मेदारी लेंगे तो कौन लेगा?
11: और झारखंड में जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए?
13: किसी झारखंड में लाठी चले डंडा चले तो जिम्मेदारी सरकार की होगी,
11: झारखंड में नौकरी चोरी की भी तो जिम्मेदारी कोई लेगा ना?
13: नौकरी चोरी का मुझे जानकारी देखिए, जब तक मैं विषय के बारे में पूरी जानकारी ना हो, मैं आज जानकारी ले लूंगा, कल आपको अगर होगा उसके अंदर 100% आपको बोलता
11: हूं। लगता नहीं है कि 12 दिन से कम किसी को सरकार में बातचीत करनी चाहिए थी? यहाँ पर जंतर मंतर में बातचीत हुई, पैनल बना, वहां पर बच्चों के लिए जो टेंट था वो भी हटा दिया गया, वहां पर
13: मुझे तो ये
11: पता
13: ही नहीं, जितना आप बता रही है ना मुझे जानकारी नहीं है, अगर मुझे जानकारी होती मैं 100% बोलता।
1: Well, Congress leader Rahul Gandhi has thrown his weight behind need aspirants, alleging that they were assaulted, they were threatened and silenced for demanding accountability over examination irregularities. Rahul Gandhi praised the students for speaking out and renewed his attack on what he described as a broken examination system. The BJP, though, has hit back sharply. Party spokesperson Sambit Patra rejected Rahul Gandhi's allegations, insisting that no shots were fired. That's what Sambit Patra said on record during the protest and accused the Congress leader of playing politics with students and children. The BJP went on to question Rahul Gandhi's silence on the ongoing recruitment protests in Jharkhand as well. Listen in to that face-off.
14: The person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for his their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened.
15: Magar Jharkhand ke bachche bhi bachche hi hain, wo bhi andolan kar rahe hain. झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए। राहुल जी का जो वक्तव्य था कि अमित शाह जी सदन में नहीं आ रहे, माननीय गृहमंत्री सदन में नहीं आ रहे, राहुल जी आप सदन चलने कहां दे रहे?
1: Well, you've just heard the reactions. The political war over the student protests has now turned into a face-off between Rahul Gandhi and the BJP's Sambit Patra. Rahul Gandhi is flagging concerns over education and issues concerning the youth of our country. Sambit Patra, meanwhile, is accusing him of selective outrage while questioning why he didn't visit Jharkhand. On that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking currently. Well, as per the latest details coming in, Rahul Gandhi's proposed interaction with students in Prayagraj has triggered a political controversy now, even before he's arrived. The Uttar Pradesh Congress unit has alleged that permission for the venue, which is basically a sports complex in Prayagraj, was granted and then cancelled at the last moment under pressure from the BJP government. The state Congress chief Ajay Rai claims that the party had paid the required fee and has accused the government of trying to prevent Rahul Gandhi from interacting with young people over issues such as paper leaks and unemployment. The BJP has not responded to these specific allegations yet. Listen in to what Ajay Rai has said in detail.
16: हमारे नेता राहुल जी बच्चों से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, और उसमें ये पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ना उसमें कहीं कांग्रेस का झंडा लग रहा है, ना कहीं नारेबाजी हो रही है, सीधे बच्चों से संवाद कर रहे हैं। और इसके पहले 30 तारीख को इन्होंने परमिशन भी हमको दिया, परमिशन दिया 30 तारीख को, उसके बाद फिर इन्होंने उस परमिशन को इन्होंने कैंसिल किया है सरकार के दबाव में।
1: अजय दुबे जॉइंस अस विद फर्दर क्लैरिटी एट दिस स्टेज। Ajay, the Congress alleging permission was formally granted, then permission was suddenly withdrawn. Has the administration given any written reason for this cancellation, or has the administration even addressed this in public?
17: We are also trying to get the details from the administration, but the important part is that Congress was preparing for this event. They have booked the space, they were booking for the catering services and the other services, payments were made. But now, with such change, the cadre of Congress and the leaders of Congress are very aggressive on this issue. They are accusing government for doing such things. We are also trying to get details on this from the administration of Prayagraj, yet they have not commented anything about this issue. So this is earlier the Congress was claiming it's not a political event, but because of this cancellation process, it has become a political situation where the opposition, they are opposing whatever is happening regarding this Prayagraj event, which Rahul Gandhi was about to come to Prayagraj, but now the permission is cancelled.
1: Ajay, tell us, so has the Congress party identified an alternative venue, or is challenging the cancellation administratively?
17: Still, Congress administration, Congress leaders are looking for the option where they can organize this event. they are looking for the option. The MP from the Prayagraj, he is also looking for Mr. Ujjwal Raman Singh. He is an MP from Congress. What he is informing us is that they are also looking for the option. But still, for that option, they need permission from the government, and the leaders are telling they have cancelled permission one time. We don't know will they allow us next time or not. So the Congress leaders, they are looking for the option where they can organize this event.
1: All right, Ajay, we'll of course keep in touch with you to see whether the administration in Uttar Pradesh responds, because so far they have said nothing. There's no written cancellation request also that has been sent to the Congress. We'll of course keep tracking what the Congress says regarding the matter too. Meanwhile, the battle over delimitation is back at the centre of national politics, and this time the negotiations appear to have begun before the bill returns to Parliament. Even as Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju ruled out a special session, sources tell NDTV that the government is exploring reintroducing the delimitation bill as early as next week and has also begun informal outreach to opposition parties behind the scenes. Mr. Rijiju met Rahul Gandhi to discuss possible changes to the earlier bill aimed at addressing concerns that have been raised by southern states. But sources are telling us that the Congress has given no commitment so far. The Congress maintains that its position remains unchanged. The Trinamool Congress and the Samajwadi Party, they have also said that they have not been consulted. So at this point, the larger political question is whether the government can build a broader consensus on an issue that has potential to reshape our country's electoral map for decades, or whether delimitation is headed for another parliamentary confrontation.
18: Government today, parliamentary affairs minister met Kiran Rijuji for discussing delimitation things. What is the idea of opposition? These are the things he spoke to us, because some rumors are telling he spoke about delimitation, and then we suggested that we will come back. Nothing is there. Our stand is very clear. Whatever stand we took in the last parliamentary session, it is still we are on that stand. There is no change on that. Opposition stand is very clear that.
19: Women's reservation bill need not be tied to the delimitation bill. The women's reservation can be given effect right away, and 181 seats can be reserved for women in a parliament of 543. We have some very strong objections to the delimitation on many counts. One on increasing the size of the house, one on the basis of population, one on a uniform 50% increase. That entails a constitutional amendment to the fact that it can't be on population. So there are a lot of technical steps which also need to be overcome in order to bring about delimitation. But whatever formula the government proposed last time was a disadvantage. If they're coming up with a new formula, we'll have to study it. But in principle, we believe that Tamil Nadu, particularly states which have implemented family planning.
20: हम लोग को पता नहीं, उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमारे लीडर्स को रीच आउट करने की कोशिश की थी. हमारा जो स्टैंड है, अपोजिशन का जो स्टैंड है, उसको बहुत पहले हम लोगों ने क्लियर किए हैं. पिछली बार जब परिसीमन बिल पार्लियामेंट में लाया गया था, उस टाइम हमारा जो स्टैंड था और अपोजिशन का जो स्टैंड था, वही स्टैंड अभी भी है. उसी स्टैंड के साथ हम आगे बढ़े.
21: जी बिल्कुल, डिलिमिटेशन बिल के बारे में हमारा यही रवैया है कि हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के बहाने ये जेरीमैंडरिंग करके हर कॉन्स्टिट्यूशन टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, जो आसाम में किए, जम्मू कश्मीर में किए. उसी प्रकार से पूरा जो उनके मेजोरिटी है, उनको एक ब्लॉक में सीमित रखना चाहते हैं, जो हम पिछली बार भी अपोज किए थे, अभी 3 महीने पहले लेके आए थे, सदन में पारित नहीं कर पाए संविधान को बदलने वाला बिल. तो इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे. हम चाहते हैं कि ये सदन में चर्चा हो, चंदा चोरी के ऊपर चर्चा हो, छात्रों के ऊपर जो लाठी चलाई गई है, पैलेट गन चलाया गया, टीयर गैस चलाया गया, उसके ऊपर चर्चा हो, गृह मंत्री आके जवाब दे.
22: अभी हमारे सामने कुछ प्रस्ताव नहीं आया, इससे सुनाई देता कि बीजेपी ऐसा कर सकता है. हमारा समर्थन नहीं है, अचानक क्यों करेंगे? बोलते नहीं हम तो विरोध भी करेंगे.
23: कोई औपचारिक सूचना हमें नहीं है. जब हम लोगों का अधिकारिक रूप से सूचित करेंगे तो राष्ट्रनीतिक विचार करेंगे.
24: अभी तक सरकार ने बातचीत नहीं की?
23: हमसे कोई बात नहीं हुई, ना हमें कोई सूचना इस बारे में.
24: तो परिसीमन के नए स्वरूप को लेकर बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा और गतिरोध बना रहा.
23: हमारा वही स्टैंड है जो पिछले सत्र में था.
24: क्या
23: महिला बिल को लागू किया जाए, डिलिमिटेशन से उससे नहीं जुड़ा जाए?
1: Meanwhile, the standoff between the government and Meta is entering another crucial round today. A day after Meta's global affairs chief, Joel Kaplan, met senior government officials, the company and the Ministry of Electronics and Information Tech are set to hold

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: सिनेमा घर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
6: बैठ सकते हैं आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: कौन?
6: बच्चे हैं?
7: 3 साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
7: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
4: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
6: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
7: हरियाणा।
6: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
7: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
7: और
6: बच्चे हैं?
7: 3 साल।
6: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
7: बहुत।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: सबका राजा आकर मसाला।
7: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
8: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना।
7: ऐसे आप कहाँ से हैं?
8: हरियाणा।
7: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
8: डेढ़ महीने पे।
7: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
8: 3 साल।
7: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
8: बहुत।
7: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
8: श्रीनगर तक अलाउड।
7: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
9: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा। सबका राजा आतेर मसाला।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: सिनेमा तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
7: सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
8: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
9: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
8: The show that sets the prime time agenda.
9: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
8: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby powered air tag.

0: वो हम एक साल का या दो साल का प्लान लेकर के नहीं चलते। हमने 2047 तक भारत को हम विकसित भारत कैसे बनाए, ये प्लान है।
1: वो लॉ कमीशन
0: कितने एडवोकेट्स हमें आगे आने वाले समय में मिलने चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस संबंध में काम करती है। थैंक यू।
2: एंड नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। सप्लीमेंट्री प्लीज।
3: शुक्रिया सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है कि जब तक न्यायिक संरचना और संस्थानों का चरित्र नहीं बदलेगा तब तक न्याय का भी चरित्र नहीं बदलेगा। क्या सरकार अपनी तरफ से एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन तय करने के लिए वाइडर रिप्रेजेंटेशन कुछ कोशिश कर रही है? ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन की कोशिश कर रही है? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव अगर कैरेक्टर नहीं होगा न्यायिक संस्थाओं का तो न्याय भी हर घर हर घर नहीं पहुंचे दर नहीं पहुंचेगा। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता
2: हूं।
0: धन्यवाद चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं उससे संबंधित ही है। सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है और ये जुडिशरी में भी है। जैसे ये एमओपी की बात करते हैं, कई बार हमारे यहाँ जब कॉलेजियम सिस्टम शुरू हुआ तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का विषय आया एमओपी। उस एमओपी में ये प्रावधान भी है और हम लगातार जो संबंधित हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं 25 हमारे हाईकोर्ट्स हैं उनको लगातार मेरी ओर से भी लेटर जाता है कि जो हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के जो कैपेबल एडवोकेट हैं उनमें कुछ नाम अगर आपको ठीक लगता है तो उनके नाम भेजे जाए, ऐसे लेटर भी हम भेजते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये हमारी प्रायोरिटी।
2: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन। फॉर दिस ओनली ही वाज टेलिंग समथिंग अबाउट यू। यू सी गार्गे जी यू लुक इन टू योर मेंबर ही शाउटिंग अननेसेसरीली।
4: सर
2: या यू स्पीक यू पुट योर क्वेश्चन। सर
4: आई एम आस्किंग द लॉ मिनिस्टर Honorable Law Minister, that is there a plan to review the thing collegium system which is working? Is there a government proposal to review that or work on that?
2: Okay, Honorable Minister.
0: Sir, मैंने कल भी जो Supreme Court के judges बढ़ाने के संबंधित बिल था उस संबंध में एक विषय रखा था। मैं इस संबंध में रिइटरेट करना चाहता हूँ, पुनः बताना चाहता हूँ माननीय सदस्य को जो उन्होंने सप्लीमेंट्री पूछा है कि हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच एक कंटिन्यूअस इंटेग्रेटेड एंड कोलोबरेटिव प्रक्रिया है जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पर विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से परामर्श व अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 तथा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 217(4) के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 1993 के सेकंड जज केस 1998 के थर्ड जज केस के तहत प्रिपेयर किए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत की जाती है। थैंक यू।
2: नाउ फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती रेखा शर्मा जी।
5: थैंक यू चेयरमैन सर। सर मैं आपके थ्रू ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहूंगी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बहुत काम है क्योंकि दो स्टेट्स का काम वहां पर है, तो क्या सरकार सोच रही है या मिनिस्ट्री सोच रही है कि वहां एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशियल ऑफिसर्स और एक्स्ट्रा कोर्ट रूम्स को बनाया जाए ताकि जो डिलीवरी सिस्टम है जस्टिस सिस्टम है उसको हम

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
11: सरसों।
12: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: मशीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका
10: राजा आकर मसाला।
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला। डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाह मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा।
9: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
10: Launch control, 0 to 100.
11: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
12: This car makes no sense, yet it makes every sense.
13: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
11: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
14: POK के firing range में खड़े हैं।
15: Just few inches away is POK.
14: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
16: आर प्योर शाही पनीर मसाला, delicious, healthy, everyday.
17: From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
18: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
19: बैठ सकते हैं आपके साथ? खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
20: हरियाणा।
19: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
20: डेढ़ महीने पे।
19: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
20: 3 साल।
19: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
20: बहुत।
19: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
20: सिनेमा तक अलाउड।
19: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
18: See, the sacrifice is unbelievable, you know.
21: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
22: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
21: The show that sets the prime time agenda.
22: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
21: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
16: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
23: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
4: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
16: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ पॉलिटिकल एक्शन,
22: NDTV 24/7. The hope is that beyond this election, this will be one of the major issues. With multiple challengers in the fray, the TMC also has done a bit of rejigging.

0: खास सुबह।
1: वाओ मम्मा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
9: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना।
8: आप कहाँ से हैं?
9: हरियाणा।
8: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
9: डेढ़ महीने पे।
8: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
9: 3 साल।
8: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
9: बहुत।
8: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
9: श्रीनगर तक अलाउड।
8: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
10: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
7: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
12: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
13: Really?
12: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
14: Launch control, 0 to 100.
15: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
16: This car makes no sense, yet it makes every sense.
17: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
18: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not."
19: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
20: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
8: जस्ट फ्यू इंच।
21: हेलो और अ वेरी गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, यू आर वाचिंग NDTV एज ऑलवेज एंड आई एम आदित्य राज कॉल। इट्स अ बिग डे फॉर जस्टिस अगेंस्ट रेप, अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट। तरुण तेजपाल हैज बीन कन्विक्टेड आफ्टर 13 लॉन्ग इयर्स ऑफ द लीगल बैटल। वी विल गेट यू मोर डिटेल्स ऑन दैट through the bulletin, but first the top headlines at this hour. Former Tehelka editor Tarun Tejpal has been sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in the 2013 Goa rape case. The Bombay High Court had overturned his acquittal and Tejpal is set to challenge the verdict in the Supreme Court. Pressure mounts over Soren government over students' protest. Protesting students demand direct talks with Soren. Soren open to talks, students want it on camera. Tamil Nadu leader of opposition Uday Nidhi slams Chief Minister Vijay, says he hasn't fulfilled even a single promise made to the people of Tamil Nadu. Amid growing buzz over possible political entry, actor Dhanush reignites language war in Tamil Nadu, stressing that one's mother tongue should come before everything else. He said, not knowing Tamil is an insult, urged people to learn Tamil as well. Assam remains in the grip of the devastating flood crisis, with the death toll climbing now to 95. Vast areas stay inundated, leaving

0: And big development coming at this hour. Tarun Tejpal has been sentenced to 10 years of rigorous imprisonment and 5 lakh that he will have to pay. This is a big news for justice against rape and sexual assault that is coming in. And even as we speak about this and get the latest reactions from Tarun Tejpal and the families of the survivor, exclusively joining us here on NDTV is Pramod Sawant, the Chief Minister of Goa. Mr. Sawant, thank you very much for joining us here on NDTV. Your first reaction, I remember as a reporter in 2013 covering this case, and it has taken 13 years. It is Goa police and the prosecution that the family is thanking for their relentless pursuit in this case. Your first reaction, please.
1: ये तो न्याय की जीत है. सबसे पहले मैं मेरे director of prosecutions और the police force इनको congratulate करूँगा. They are continuously follow up this case and they got मैंने उनको न्याय मिला. इसलिए मैं वो कहूँगा कि न्याय की जीत है. मैं वो युवती का साहस और दृढ़ता इसको भी नमन करता हूँ. कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 13 इयर्स वो हिम्मत से डटी रही और आज उस युवती को न्याय मिला. सही में ये अपराध तो हमारे गोवा की धरती पे हुआ था, इसलिए ये गोवा सरकार का यानी हमारी डेफिनेटली हमारी ये रही कि गोवा पुलिस और डीओपी उसको न्याय दे. इसीलिए हमने यानी नीचे की कोर्ट में उसको राहत मिली थी, फिर भी वी हैव चैलेंज दिस केस इन द हाई कोर्ट और आज टुडे द हाई कोर्ट हैज

0: मीडिया से बातचीत की। वो तहलका के संपादक रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल अटैक है, उनको किताब नहीं लिखने दिया जा रहा और कह रहे हैं उमर खालिद और शारजील इमाम का नाम ले रहे हैं। ये जो पॉलिटिकल अटैक की कॉन्स्पिरेसी तरुण तेजपाल अब पहली बार बता रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
1: बस मैं इस पे एक ही कहूंगा कि गोवा सरकार हमेशा के लिए महिलाओं का सम्मान करती आई है, महिलाओं की सुरक्षा इनके साथ पूरी तरह से खड़ी रही है। इस हमारी बहन के साथ भी हमारी गोवा पुलिस और प्रोसिक्यूशन उसके साथ खड़ी रही, इसीलिए तो 13 साल हम कंटिन्यूअसली इस केस का फॉलोअप करते रहे, नीचे वाले कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। अभी किसको इसके ऊपर कुछ कहना है, इसके ऊपर देयर इज नो कमेंट फ्रॉम माय साइड। बस हम उस युवती को न्याय दिला सके, यही हमारी उस जीत है। मैं कहूंगा कि ये तो एक्चुअल न्याय की जीत है।
0: जी सावंत साहब, अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि अब जो तरुण तेजपाल है और उनका जो एक लीगल पक्ष है, वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो ये वर्डिक्ट दे दिया, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, गोवा पुलिस गोवा सरकार पूरी मुस्तैदी से लीगल अक्यूमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज इसको करेगी, और साथ में जो है अगर तरुण तेजपाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसका मुकाबला करेगी?
1: विल स्टैंड इन द सुप्रीम कोर्ट आल्सो, यस।
0: जी, एंड एनी मैसेज दैट यू माइट हैव फॉर द सर्वाइवर इन दिस केस, फाइनली एक कोई टिप्पणी अगर आप परिवार के साथ कुछ आप कहना चाहते हैं?
1: हमेशा के लिए हम उस युवती के साथ थे और गोवा सरकार हमेशा के लिए महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के साथ में खड़ी रहेगी।
0: जी प्रमोद सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी के साथ बात करने के लिए। दैट वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा जॉइनिंग अस एक्सक्लूसिवली हियर ऑन एनडीटीवी ऑन द फोन लाइन, गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज फर्स्ट रिएक्शन टू द कन्विक्शन ऑफ तरुण तेजपाल, द फाउंडर एंड द फॉर्मर एडिटर इन चीफ ऑफ तहलका मैगजीन, कन्विक्टेड फॉर रेप एंड सेक्शुअल असॉल्ट अगेंस्ट अ यंग जर्नलिस्ट कुलीग हु वाज आल्सो वर्किंग इन 2013 इन द तहलका मैगजीन। नाउ इवन एज द रेप कॉन्विक्ट तरुण तेजपाल्स फर्स्ट रिएक्शन हैज आल्सो कम इन, ही हैज सेड इन फैक्ट he said that I'm being framed on this Tarun Tejpal case. But before you get to hear that reaction from Tarun Tejpal, we have Sujata Dwivedi also joining us live on this big case. Sujata, what are the details that you're picking up? We know for sure that 10 years of rigorous imprisonment has been slapped against Tarun Tejpal, including a 5 lakh fine. But what are the other legal details or the observations that the court has spelled out in the final order? And what is the legal strategy of Tarun Tejpal ahead?
2: Well, to begin with, Tarun Tejpal is now going to approach the Supreme Court, the Apex Court, to get a stay on his conviction that has been given by the Bombay High Court today. But of course, there are several of these important sections that have been mentioned, and also the fine and the imprisonment tenure has been given as per that. To begin with, Section 354 and Section 357 that has been levied upon him, in which a person in authority has went on to not only exploit a worker, but also that of sexual assault that has happened with that junior female employee in that very elevator back then in November 2013. Now, we know that back then in 2021, when the entire incident took the Mapusa court, when it went on to give bail to the accused here, who is Tarun Tejpal, it stated that there was no enough and sufficient evidence, and also that the victim's appearance and the conduct was not really that of a victim. And these weird remarks by the court actually led to the Goa government take cognizance and go and approach the Bombay High Court. And the Goa government here was also sure that if bail is given, or say that his acquittal year in the case is stayed, then they will also approach the apex court further. But of course, Tarun Tejpal, in his ordeal to the court, stated that he's 62 years old, he's got a family, and that he had already apologized for the conduct that he did. But an email cannot just work

0: खास बात।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मास्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: सरसों
8: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
10: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
11: हरियाणा।
10: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
11: डेढ़ महीने पे।
10: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
11: 3 साल।
10: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
11: बहुत।
10: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
11: श्रीनगर तक अलाउड।
10: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
9: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: सिस्टम हूँ, मेरे को तहलका पत्र काटना है, उसके चलते हुए मेरे को पीछे 13 साल से सरकार पड़ी है और मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, बहुत सारे लोग हैं जो सरकार की नीतियों से या मानते नहीं या वाकिफ नहीं है ज्यादा, उन लोगों की भी सरकार पड़ जाती है, इस टाइप की सरकार है, हमारी सरकार है, आपकी भी है, मेरी भी है,
1: तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कह रहे हैं आप
0: 100%। हम लोग अभी इसको ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं जजमेंट से, हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो अपील नहीं किया है
2: We'll listen to some other reactions that are coming in on this.
3: Yeah. See, the judgment has still not been uploaded. So once we go through the judgment and find the reasons, we will be able to comment on how it is. So he's been convicted for all the offenses that he was charged for, and he has been sentenced to 10 years rigorous imprisonment and a fine of 5 lakhs. That is the maximum, that because it has to be done concurrently.
4: Bombay High Court ka jo faisla aaya hai, maine faisla to pura nahi dekha hai, lekin jahan tak main prosecution ki taraf se cases chalata tha, wah victim ka evidence ahem rehta hai. कि अगर विक्टिम कहती है कि आरोपी ने लिफ्ट चलते समय मुझसे मोलेस्टेशन का सवाल किया था, तो उसके लिए भी कोरोबरेटिव एविडेंस प्रोसिक्यूशन गोवा पुलिस ने पेश किए थे और उसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये जजमेंट रिवर्स कर दिया है। मैं इस फैसले से एक बात तो साफ हो गई कि आप कहाँ भी हो, कौन सी भी पद पर हो, क्या करते हैं, इसे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसे छोड़ता नहीं है, ये बात अभी पक्की समझ में आ गई।
5: मिस्टर सावंत, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन एनी टीवी। योर फर्स्ट रिएक्शन, आई रिमेंबर एज अ रिपोर्टर इन 2013 कवरिंग दिस केस एंड इट हैज टेकन 13 इयर्स, इट इज गोवा पुलिस एंड द प्रोसिक्यूशन दैट द फैमिली इज थैंकिंग फॉर देयर रिलेंटलेस परस्यूट इन दिस केस, योर फर्स्ट रिएक्शन प्लीज।
6: ये तो न्याय की जीत है। सबसे पहले मैं मेरे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और जब पुलिस फोर्स, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, दे आर कंटिन्यूअसली फॉलो अप दिस केस एंड दे गॉट, मैंने उनको न्याय मिला, इसलिए मैं वो कहूंगा कि ये न्याय की जीत है। मैं वो युवती का साहस और दृढ़ता, इसको भी नमन करता हूँ। कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 13 ईयर्स वो हिम्मत से डटी रही और आज उस युवती को न्याय मिला। सही में ये अपराध तो हमारी गोवा की धरती पे हुआ था, इसलिए ये गोवा सरकार का यानी हमारी पहले डेफिनेटली हमारी ये रही कि गोवा पुलिस और डीओपी उसको न्याय दे, इसीलिए हमने यानी नीचे की कोर्ट में उसको राहत मिली थी। फिर भी वी हैव चैलेंज दिस केस इन द हाई कोर्ट और आज टुडे द हाई कोर्ट हैज गिवन द कन्विक्शन फॉर द तरुण तेजपाल। दिस इज रियली द विक्ट्री of the government also and victory of in this case.
7: It has taken so many years after the complaint and after our policies and laws talk about fast track court, but yes, still happy because again setting a precedent to say that all kinds of mincing words, you know, splitting the hair and saying she said no, she didn't say no, but you know she didn't say yes and all of it. I'm so glad that the court has convicted this man, and it is a lesson, it is also a message going across to everybody. Sexual harassment at the workplace does not mean that, you know, she did not say no. Because the law, the Supreme Court has also said no is a complete sentence and you accept it and move on and do not abuse your authority and power over anybody over there.
8: See, right now I think the law is taking its course. The victim happened to be a very, very young girl. So I think the courts are, you know, making and setting a precedent, they're taking out an example. So let law take its course. And I think it should act as a deterrent for future cases. And, you know, I would firmly go by what evidence is on record, you know. And I feel, you know, because right now the matter is in court, so the benefit of doubt should be given to the accused, like in all cases. And if the law has

0: And I hope the government listens to this and probably gives the due importance to.
1: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back. Coming up next is Prime 5 with me, Raisha Singh. Sentenced to 10 years of rigorous imprisonment in the 2013 Goa rape case, the Bombay High Court had overturned his acquittal and they.
2: ये लीजिए भाई मैंने बनाया है
3: ब्रेड सिर्फ आपके साथ खाइए ना प्लीज
2: सर आप कहाँ से हैं
3: हरियाणा
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे
3: डेढ़ महीने पे
2: आपकी फैमिली है
3: और
2: बच्चे हैं
3: तीन साल
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना
3: बहुत
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है
3: सिनेमा घर तक अलाउड
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो
4: ही हैज ट्रैक्ड द पल्स ऑफ पावर फ्रॉम वॉशिंगटन टू कोरिया Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
5: This location from Tel Aviv
4: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
7: The Ayatollah Khamenei is gone.
8: There has been a missile attack right behind you,
9: and we need to rush into a shelter.
10: Heading there.
11: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
4: And now, Aditya Raj Kaul. Covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात
13: वाओ मामा क्या स्वाद है
14: अरे मेरे राजा

0: आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे?
1: ये छात्र लोग का जो आंदोलन हो रहा है ना, उसको मनोबल को ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए।
0: You know, people, those who are in and around this place, but it has struck across the state of Jharkhand. Those who have come for the future to fight, to give their shoulder to the fight that the students are fighting for the future.
2: दुर्भाग्य की बात है कि हम झारखंड को चुने सर, शायद हम सेंट्रल को चुने रहते तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते। ये नॉर्मलाइजेशन के आड़ में क्या होता है कि सीट बेच दी जाती है।
3: पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार पढ़ क्यों रहे हो, एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन बेच दो ना, 20 लाख रुपया आ जाएगा, नौकरी खरीद लो।
4: कर्ज करके हम लोग पढ़ाया जा रहा है, और अब ये सरकार तो देख रही है सारा सिस्टम से बेच रही है, पूरा हर वैकेंसी को बेच रही है।
5: हर साल 10 से 12 हज़ार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास हो रहे हैं, टोटल 45 से 48 इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन बेरोजगार इंजीनियरिंग की फौज खड़ी कर दी जा रही है सरकार के द्वारा।

0: has tracked the pulse of power from Washington to Korea.
1: Since 25th of July, the students in Ranchi have been protesting against the alleged examination paper leak. This is the ground where the protests have been taking place.
2: अगर पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार पढ़ क्यों रहे हो? एक कट्ठा, दो कट्ठा जमीन बेच दो ना, 20 लाख रुपया आ जाएगा।
3: लो, पीजी करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, बीएड करके 8000 में नौकरी रखेगा, कीजिएगा आप।
1: Hello, good evening and welcome to Nationwide at 6, coming to you live from Ranchi on NDTV. I am Ankit Tyagi and as always, our promise is where the news is, that's where we are. This is once again the Jaipal Singh Stadium and this is the epicenter of the student anger that we are witnessing here in Jharkhand. Before I go on and get you the real voices, the anger and the frustration on the 13th day of this protest which is going on, I want to show you something which these two boys and this lady and this gentleman is holding here. Langar ho ya biryani, hausla baato chhatr nahi. This is a direct message to a lot of people, especially on social media, those who are trying to in fact give some color as far as this protest is concerned. They are trying to in fact draw comparisons, a direct message that it is about come here, inspire, motivate, help people, but don't divide the students. Ye kyun leke khade hua?
2: क्योंकि जैसे कि जाने आप देख रहे, कुछ कुछ लोग इंस्टाग्राम में जो रील बनाते हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कहते हैं खुद को, वो लोग उन लोगों ने यहाँ पर आके बोले कि ये आपको पता है क्या बोले, नहीं बोले, स्टेटमेंट मालूम है, पूरा वायरल है. तो इन लोग का बस हम लोग एक अटैच कर रहे हैं कि हम लोग अगर आपको कुछ करना है तो आप हौसला बढ़ाइए, छात्रों को मत बांटिए, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ के सबको यहाँ प्रकृति और कला से प्रेम करते हैं. तो बस छात्रों को एकजुट बनाइए और ये इससे फालतू फालतू मतलब नेट मत फैलाइए,
1: फालतू बातें मत कीजिए. मैम आपका क्या नाम है, आप क्यों लेकर आए हो इसको?
4: सोशल मीडिया पे जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमें जुनैद की जरूरत नहीं है, जैसे जुनैद ने बिरयानी बांटी थी वैसे यहाँ पे मंदिर से लंगर आ रहा है. तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आपस में डिसाइड नहीं कर रहे, आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे कि आप कौन से रिलीजन से आ रहे हो, आप कौन से रिलीजन से आ रहे हो, तो हु आर यू टू डिसाइड कि कौन हम लोगों को सपोर्ट करेगा, कौन नहीं सपोर्ट करेगा. यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजन बेस्ड कमेंट नहीं करेगा, पर जो भी असामाजिक तत्व आके ऐसा बोल के गए कि लंगर एंड ऑल और बिरयानी एंड ऑल, तो उन लोगों के लिए दिस इज अ स्लैप टू देयर फेस कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो यूनिटी में खड़े हुए हैं अपने वेलफेयर के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए. तो यहाँ पे रिलीजन बेस्ड कोई कमेंट करने का बात नहीं.
1: Don't divide us on religion. Do not try and wash your dirty agenda here. That's an important message that this young lady and this gentleman is giving here at the stadium where the protest is going on. Today is the 13th day. I want to show you around. The crowd is increasing, but before I do that, the situation is so dire, ladies and gentlemen, that even Spider-Man had to come here to support these students. क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम स्पाइडी है.
1: स्पाइडी, यहाँ क्यों आ गए हो आप रांची में?
5: रांची में प्रोटेस्ट जरूरी है, सपोर्ट है, क्योंकि ये 13 सालों से इसका पेपर लीक हो रहा है और साथ में इसकी सीटें जो है वो बिक जा रही है.
1: तो आपको क्यों लगा कि आपको यहाँ पे छात्रों की मदद करने के लिए आना चाहिए?
5: छात्रों के लिए स्वेटर ही आएगा आगे, तभी तो आगे हम जेंजी है तो हम आगे आएंगे, तभी और हमसे जुड़ते हुए सब आगे आएंगे.
1: You know, it's quite interesting, and as I said, the situation is so dire that so many people are coming. They are in fact coming to show their protest. Let me show you around. You will see this entire space is, you know, packed. Yesterday when I had come here, it was not as many people, it was raining very very hard, and now once again on the top of these doles there are a lot of young people, those who have come from all across. You would see them talking, sitting and putting their voice out. Let me just show you around on that side as well. It is just not under the tent, all across there are these students, those who are standing here, a lot of people coming here to express their support. Families, parents, all of them are at this moment here.

0: वो नंबर एक नंबर से छटा जाता है, छट जाते हैं।
1: तुम कितनी कितनी बार कितने नंबरों से?
0: सर हम अगर पीजीटी का फाइनल डीबी करवाए हैं, उसके बाद उसमें हम मात्र यहाँ पे झारखंड सरकार का ये है ना सर, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के तहत जो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है ना, उसके वाड़ में लोगों का भविष्य बेचा जाता है। पता नहीं चलता है कि लोग कितना क्वेश्चन सही किए और कितना मेरा सही हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन के आड़ में क्या होता है कि सीट बेच दी जाती है, लोगों का नंबर डायरेक्ट बढ़ा दिया जाता है।
1: तो ये इसी सरकार में होता है या मतलब जब से पेपर एक के बाद एक सरकार कोई भी हो, ये इस तरह का सिस्टम?
0: सर ये झारखंड में जब से बिहार से झारखंड अलग हुई है तब से ये देखने को मिला है।
2: सर यहाँ पे झारखंड में रेट फिक्स है। अगर गांव, हम लोग गांव देहात से हैं, अगर पढ़ने आते हैं तो लोग बोलते हैं यार पढ़ क्यों रहे हो, एक कट्ठा दो कट्ठा जमीन बेच दो ना, 20 लाख रुपया आ जाएगा, नौकरी खरीद लो, सरकार तो बेच रही है, तुम क्यों पढ़ रहे हो?
1: आम चर्चा होती है,
2: आम चर्चा गली मोहल्ला में चर्चा है सर। इसमें से अधिकतर खेला है कि यार पढ़ो मत। जो हमारे गांव के बुजुर्ग भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, उनके कान में भी चल गया है कि यहां पे सीट खरीदा जाता, पढ़ो मत,
1: एक दो जमीन बेचो,
2: जमीन बेचो दो कट्ठा और जाके सरकार को पैसा दो, आराम से नौकरी करो, पढ़ो, 20 साल एज मत खराब करो बाबू, जमीन कहीं बेच दो और सीधे जाके नौकरी लो आराम से।
1: क्या नाम है आपका, कितने साल?
2: मेरा नाम राजकुमार रवानी हुआ सर, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट हूँ, मेरा एज 25 हो रहा है, 35 वर्ष हो रहा है सर। यहाँ पे क्या
1: 35
2: ईयर हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये झारखंड सरकार में क्या है, खेला क्या है?
1: कितने साल से आप तैयारी कर रहे हो?
2: मैं सर 2006 में मैट्रिक किया, उसके बाद ग्रेजुएशन,
1: 20 साल हो गए
2: जी, 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आज तक
1: 2009 में आपने ग्रेजुएशन किया होगा ना,
2: 2013 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद
1: मैट्रिक किया,
2: उसके बाद मैंने उस टाइम से मैं कंपटीशन में लगा रहा,
1: अभी तक से लेकर अब तक 13 साल हो गए
2: जी सर, अब तक मैं अभी तक से तैयारी करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं सरकार के कहां द्वार और नौकरी कहां से खरीदूं सर?
1: मैं ये समझना चाह रहा हूं आप लोगों से, इतने इतने साल कोशिश करते हैं नहीं होता है, तो सरकारी नौकरी का ऐसा क्या मोह है?
3: झारखंड में और कोई ऑप्शन है नहीं, झारखंड में वैसा कुछ ऑप्शन है नहीं कि आप, ऐसा भी कुछ नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया हम लोग को एजुकेशन में कि कुछ आप टेक्निकल कर सके।
1: लोगों को ये समझना चाहिए कि क्यों सरकारी नौकरी के लिए,
3: तो वही है ना कि कोई ऐसा
4: क्या है ना, हम बता रहे हैं आपको, मेन क्या है कि अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स किए हैं, जैसे इंजीनियरिंग किए हैं, नॉइड मेडिकल किए हैं ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। लेकिन आप सिंपल ग्रेजुएशन, सिंपल पीजी किए हैं ना, आप बीएड किए हुए हैं, आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइए, 10,000-8,000 रुपये आपको सैलरी देगा। आप कीजिएगा पीजी करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके, बीएड करके, आपको 8,000 में नौकरी रखेगा, कीजिएगा आप। बात होगी ये हो गया ना कि आप ग्रुप डिस्कशन जब होता है ना लड़का लोग में, झारखंड में ये स्थिति आ गई है। अधिकतर पहले क्या होता था कि कोई क्वेश्चन पूछता था करंट से कहाँ से आएगा, कहाँ से कहाँ करंट आता है, ज्योग्राफी में कहाँ से आएगा, हिस्ट्री में कहाँ से आएगा। अब ये स्थिति आ गया कि व्हाट्सअप में आदमी शेयर करता है कि क्वेश्चन आए लो तोर पास, क्वेश्चन पेपर है लो तोर पास,
2: एक दिन पहले
1: एग्जाम से एक दिन पहले,
4: एक दिन पहले, दो दिन पहले आदमी सर्कुलर होने लगता है, हर दोस्त, हर ग्रुप, हर कॉल चैनल में कॉल करने लगता है कि आपके पास क्वेश्चन आया का, क्वेश्चन आया गया।
5: एक सप्ताह से पहले पता चलने लगता है कि बोले ये सीट इतना बिक रही है, ये 20 लाख में बेची जा रही है, ये 25 लाख में बेची जा रही है,
1: खुला चल रहा
4: है। आप चाय की टपरी में चले जाइए कहीं पे, आप चाय टपरी में चले जाइए, किसी लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको खुलेआम आपको देखने को मिलेगा कि चार लड़का ग्रुप में बैठा हुआ है, बोलेगा कि ये लड़का के पास इतना क्वेश्चन आए लो।
1: पूरा सिस्टम है उसके ऊपर कोई किसी को कोई ट्रस्ट ही नहीं है कि बेच बाज के बन सकते हो, तो आपको तैयारी में भी यही है कि आखिरी समय तक कोशिश करते रहो कि क्वेश्चन मिले।
3: कर रहे हैं सर, सर जी जान रहे कि कितना करप्शन है, कितना हाई लेवल।
0: हर बार बताने जाते हैं सर मुख्यमंत्री को, तब बोलता कि हमको संज्ञान,
1: पेपर लिए बैठे हो
0: ये पेपर सर, हम शुरुआत से लेकर के बैठे हैं कि हर बार हम लोग मुख्यमंत्री के पास मिलने गए हैं और वो संतावना दिए हैं, बोले सर इस तरह से पेपर लीक हो रहा है, इसको आप ध्यान दीजिए, रोकिए, तो बोलता हम संज्ञान में लिए हुए हैं।
2: ठीक है, ये जो बात है ये हमारे संज्ञान में है। अरे भैया संज्ञान में रख के क्या कीजिएगा, उसको उजागर कीजिए ना।
3: पर सचिवालय इतना बड़ा स्कैम
6: सर, ये अगर हम लोग कुछ भी बात हेमंत सोरेन के सामने रखेंगे, मतलब ये सब बीजेपी वाले ने, ये सब पढ़े वाले ना, एक हो बीजेपी वाले, इन लोग का बीजेपी भेज दिया है
2: स्टूडेंट
6: को बीजेपी, हम लोग कोई बीजेपी उजेपी नहीं, हमको बीजेपी हम का मतलब है बीजेपी से, हमको नेतागिरी से कोई मतलब नहीं, मगर सरकार का साफ करना ये सब कुछ नहीं, ये सब बीजेपी का आ गया है। यहाँ झारखंड में साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है, बाकी हम लोग प्रूफ देते हैं कि ऐसे ऐसे एक किसी सेंटर में पीजीटी में पास कर जाता है प्रूफ के साथ, मान लीजिए 20 सेंटर बनाया, 5 ही सेंटर से 80% बच्चा कैसे पास हो जा रहा है जब बच्चे प्रूफ के साथ बात करता? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम लोग नहीं पढ़ता है नहीं पास करता है इसीलिए तुम करते।
1: अगर ये नहीं ऐसा ही रहता है, इस बार उम्मीद है सरकार सुन रही है कुछ?
4: सर सुनने के बाद अब पता चलेगा क्या निर्णय लेगा, वो सरकार पे डिपेंड पड़ता है, हम लोग तो अपने लगे हुए हैं।
6: सर अगर अबर अगर हेमंत सरकार नहीं सुनी ना तो ये घर 26 के बाद और 26 साल में भी नहीं सुधरेगा, ये अभी लास्ट मौका है। सरकार अगर अब भी नहीं सुनी तो उम्मीद नहीं है कि झारखंड को सुधार पाएगा, इसलिए सरकार को ये सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि अभी लास्ट है, एक बार स्टूडेंट का बात मान लीजिए आपका झारखंड निकल अच्छा
5: करती है, जाएंगे नहीं जब रद्द करेगी, रद्द करने के बाद हमको सीबीआई जांच चाहिए, सीआईडी जांच तो सरकार की जांच है, हमको तो सबसे पहले वो रद्द करे, रद्द करने के बाद सीबीआई जांच करे तो ही हम लोग यहाँ धरना से हम लोग यहाँ निकलेंगे, नहीं तो यहाँ ना था, चाहे जान भी चले जाए हम लोग डटे रहेंगे।
3: वैसे संतावना देखे तो हमेशा भगा दिया जाता है।
6: सर खुल्लम खुला कि अभय तिवारी पीजीटी में पकड़ा गया और सीजेल में पकड़ा गया बेटा, तो फिर रद्द करो ने, फिर लेट क्यों कर रहे हो, उसको रद्द करो। जब दोनों में बैठा हुआ वो पहले आप पीजीटी टीचर था इंग्लिश में, फिर उसको छोड़ के फिर चल गया बीएसओ में, चल गया सीजीएल 4800 ग्रेड पे छोड़ के सीधे 4200 में ग्रेड पे में गया और दोनों पकड़ा गया, तो फिर सरकार रद्द क्यों नहीं कर रही है, उसको रद्द किया जाता था।
1: जो
6: जब तक रद्द नहीं करेगी तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, रद्द करना पड़ेगा।
1: ये गुस्सा जो है, दिस इज द एंगर एंड व्हाट ही सेड, आई वांट टू लेट दैट बी द लास्ट वर्ड, दिस इज द दे बिलीव दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट to in fact make an earnest effort, to make an earnest attempt, listen to these voices, cancel the paper and bring systemic reforms so that people are not here 2 saal baad phir se yahan na baithna pade. And that is why all of these people, all of these students are here and determined that till the government doesn't in fact heed to their demands, they are not going anywhere. And at least that's the message that the chief minister should take very, very, very seriously. From the millennials to Gen Z to every generation that you can think of, people are here. Across, it's filling up. Thankfully, it's not rained, so you will see there are puddles of water everywhere. And like the water is filling the field, there are people, those who are coming and filling this as well. Some very interesting, in fact, posters, banners as well. You have to raise your voice, bro. There is no alternative choice, bro. Just to you know rhyme and to tell the language of the young people, आपको लगता है कि बिना आवाज उठाए कुछ नहीं हो रहा?
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकार सुनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार बहरी हो चुकी है।
7: सर संवेदनशील बोलने में 2 मिनट का टाइम लगाती है तो वो सरकार ऐसे सुनेगी? और हम लोगों का जो मांग है वो और भी गति लेते जा रहा है और हम लोग जब तक यहाँ से तब तक नहीं लेंगे जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी।
8: आई वॉन्ट टू शो यू सम यू नो लेडीज एज वेल, दोज हू हैव बीन हियर, आपसे मैं कल भी बात कर रहा था जब हम स्टेज पर थे, अभी सरकार की तरफ से जो बात हुई है कि आप लोगों ने 11 नवंबर का अपना एक टीम का, आपको कोई रिस्पॉन्स आया है सरकार से?
9: अभी तो नहीं पता है, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, डेलीगेशन हमारे जाएंगे उसके बाद हम आपको अपडेट कर पाएंगे।
8: उम्मीद है सरकार की तरफ से कि आपको अब वो बुलाएंगे, बातचीत हो पाएगी, स्ट्रक्चर्ड बातचीत हो पाएगी?
9: बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद की क्या बात है, सरकार को बात तो करनी ही पड़ेगी। और देखिए लोकतंत्र में बातचीत करना एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कल ही उन्होंने संकेत दिया था तो वो बातचीत के लिए हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो जाएंगे।
8: You know, thank you. This spot is becoming a spot where not just about JPSC or JSSC, these are some young students, young people here, volunteers. What are you guys doing here?
10: Sir, हम लोग विकसित फाउंडेशन से हैं, रांची में पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं और अभी भी लोगों को मोटिवेट करने आए हैं कि आप यहाँ आए हैं छात्र आंदोलन में, बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसे छात्र हैं जो आज भी इन सब चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाए हैं, तो उन तमाम ऐसे छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप यहाँ पे आएँ, खाना बाँट रहे हैं, बिस्किट बाँट रहे हैं, किसी भी तरीका का सामान स्टूडेंट के बीच में बाँट रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि यहाँ सफाई का ध्यान रखें, जहाँ सफाई
8: रहती है। आप लोग कचरा इकट्ठा कर रहे हैं जहाँ पे भी लोग डाल रहे हैं, ऑल ऑफ यू देम से, आप लोग खुद भी स्टूडेंट्स हैं राइट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रोटेस्ट, आपको क्या लगता है?
11: सर बिल्कुल, जो हो रहा है हमारे हित के लिए ही हो रहा है, क्योंकि एज अ यूथ एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो हमें आगे लेके जाएगा और देश देश जो विकसित भारत का हम लोग बात करते हैं वो एजुकेशन ही वो चीज़ अचीव कर पाएगा। तो अगर एजुकेशन में ही हमारा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर कुछ डिफॉल्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हमारा हक है कि हम लोग उसके लिए खड़े हो, उसके लिए लड़े, चाहे वो गवर्नमेंट से ही क्यों ना अपना बात रखना पड़े।
8: आपको लगता है, रुक जाइए दोस्त, आपको लगता है कि जैसे आप यंग लोग हैं, अभी थोड़े दिन पहले तक जंतर मंतर पे जेन जी की बात हो रही थी, उस प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, आपको लगता है कि उन लोगों को जैसे सीजेपी हो, अजबीज दीप के हो, उन सबको यहाँ पर आपके सपोर्ट में आना

0: चाहिए था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं क्या?
1: सर पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि
0: दे आर नॉट पॉलिटिकल, राइट? दे आर अ प्रेशर ग्रुप, दैट्स व्हाट दे से, दैट्स व्हाट दे से, शुड दे हैव कम हियर?
2: या दे शुड कम हियर जस्ट बिकॉज़ दे आर प्रेशर ग्रुप. So I think every pressure group should come here. I'm not supporting any political pressure, political group, but rather I would be supporting, yeah, pressure group should be here.
0: और जो झारखंड के आइकॉन्स हैं, MS धोनी हैं, और जो बाकी लोग हैं, आपको लगता है उनको भी आप लोगों की आवाज़ में आवाज़ मिलानी चाहिए?
2: लिटरली माही भाई अगर एक बार कहीं पे भी ट्वीट कर दे या एक्स पे भी एक अपलोड कर दे कुछ भी, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन हो जाएगा.
0: व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू?
1: मैं भी जर्नलिज्म का ही पढ़ाई कर रही हूँ.
0: जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रही
1: हूँ. हाँ.
0: तो आपको लगता है कि ये जो यहाँ पर जो जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, ये रियल ग्राउंड की आवाज़ है जो सरकार को सुननी चाहिए?
1: एग्जैक्टली, मुझे यही लग रहा है कि सबको सुननी चाहिए. जैसा कि हम लोग झारखंड में देख रहे हैं, जितने भी बहुत सारे चीज़ ऐसे हो रहे हैं, कभी भी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी भी ऐसा हो रहा है कि एडमिट कार्ड आ रहा है, उसके नेक्स्ट डे एग्जाम के बारे में पता चल रहा है. और जितने भी लोग इतने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग कितने सारे डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हम लोग वो सब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते. जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमें जितने भी झारखंड के लोग हैं, फिर जितने भी लोग हैं, सबको साथ में मिलकर के अच्छे वे में इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाना चाहिए.
3: सर ये सवाल बस JPSC और JSSC तक जाके नहीं रुकता है. यहाँ की जो प्राथमिक शिक्षाएँ हैं कॉलेज में, कॉलेज स्तर पे, चाहे स्कूल के स्तर पे, तो उनमें भी बहुत सारी खामियां हैं.
0: सिस्टमिक प्रॉब्लम है, सिस्टम पूरा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है.
3: पिछले 2-3-4-5 साल से जो रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए छात्र हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम देखने को मिला है कि ना उनका टाइम टू टाइम एग्ज़ाम होता है, उनको आगे की पढ़ाई के लिए जिनको बाहर जाना है उनको भी एडमिशन्स वगैरह के लिए फेस करना पड़ता है. तो ये
0: आई हैव सीन दिस इन बिहार एज वेल. एग्जामिनेशन टेक्स ईयर्स. योर बैचलर डिग्री विच इज सपोज टू बी 3 years गेट्स ओवर इन 5 years, 6 years. पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर results, and that becomes, it is actually playing with their future. Like I said, it's just not about only about now JPSC or JSSC or CGL. Young people from across the state are coming here because this place, this stadium, the Jaipal Singh Munda Stadium, he's an icon in Bihar, in Jharkhand. This has become right now the important messaging point. And earlier today, I met some engineering graduates. Engineer jo berozgar hain, unemployed engineers, those who have been. You are an engineer yourself?
4: I'm an engineer. I'm a mining engineer.
0: And
4: we are preparing for the government exam, but it is not conducting very regularly. That's
0: because I spoke to some of the engineers. They said in the last 26 years, there has been only 3 times when the job has come.
5: Yes, yes.
4: Actually, there are a lot of problems. If you are going to the very root, starting from the very root, but we need to fix this, all the things. Actually, it's just not only about this protest and that protest. It's just that it's kind of a total system failure. We need to understand how actually the system works.
0: Total system failure. The rot is very, very deep. Listen into some of the voices from the engineering graduates, because in a country like ours, parents think if you become a doctor or an engineer, your life is set. Alas, they should hear these voices. One would have thought that, you know, the tents of the students would be the focal point, would be where you would see the energy and all the protests. But now this entire stadium, this entire ground has become a corner for students who are coming from every nook and corner of Jharkhand with their problems. People, those who are hoping for government jobs, and it is no longer just about JPSC or the JSSC or CGL and others. There are engineering graduates, those who have also come before their demand. This has become now the focal point, and it also highlights the not only the employment situation here in Jharkhand, but also how the students, the young people, feel absolutely trampled, their dreams being trampled in the system. The rot is so deep. आप लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं सब लोग, ये सब जरा मेरा सहयोगी अश्विन दिखाएंगे आपको ये ऑल दिस बैनर्स दैट दे हैव रिलीज JPSC AE वैकेंसीज़. ये जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए भी यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं। तो आप लोग मुझे पहले बताओ क्या नाम है तुम्हारा भाई?
5: मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं देवघर जिले से आया हूँ और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं सारे के सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और झारखंड के अलग अलग जिले से आए हैं।
0: कहाँ से इंजीनियरिंग करी है तुमने?
5: मैंने BIT सिंदरी धनबाद से करी हुई है, झारखंड का एकमात्र
0: कौन से संस्थान है। कौन से उसमें करी थी?
5: सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जितने भी है मतलब सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के भी कुछ कैंडिडेट है, मैक्सिमम सिविल के हैं। तो हमारी जो वैकेंसी आती है JPSC के द्वारा आयोजित होती है, JPSC असिस्टेंट इंजीनियर। और दुर्भाग्यवश हम ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 26 वर्षों में हमारी वैकेंसी सिर्फ 3 बार आई है, 2007, 2013, 2019। इसके बाद वैकेंसी आई ही नहीं है। मतलब 7 साल से हम इतने अभागे हैं कि हमें अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक विज्ञापन तक नसीब नहीं हुआ है।
0: मतलब एक तरफ जहां पे लड़ाई इस बात की उधर हो रही है कि JPSC के पेपर्स में धांधली, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की तो नौकरी नहीं आई है। धांधली तो छोड़ दीजिए, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है कि आप लोग जाके एग्जाम देकर अपनी नौकरी के लिए कुछ कर पाए।
5: एकदम सही बात है।
0: खाली रिक्त स्थान है।
5: हाँ, खाली रिक्त स्थान है, उसके लिए हमने RTI किया था। ऐसे जो आंकड़ा है, हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है पथ निर्माण विभाग, और जो पथ निर्माण विभाग है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के अंदर वो मंत्रालय है। तो उनसे भी गुजारिश है कि इस पे थोड़ा सा संज्ञान ले।
0: 539 नौकरियां,
5: ये नौकरियां हैं, इसके लिए हमने RTI किया हुआ था। तो ये जो है RTI के बाद हमने जितने भी विभाग है यहाँ पे जो पेरेंट
0: पेपर वर्क सारा कर चुके हो, पेपर वर्क भेज चुके हो, पत्राचार को भेज चुके हो,
5: फिर RCD डिपार्टमेंट को, जो पथ निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग, जितने भी विभागीय मंत्रालय हैं हमारे और विभागीय जो सचिव हैं उन सब के पास हमने जाके आवेदन दिया, अर्जी दिया है बाकायदा प्रूफ के साथ, ताकि हमें कोई मतलब खामी ना देखने पड़े।
0: ये बताओ कि अक्सर ऐसा ही होता है ना कि हमारे परिवारों में सबको ये लगता है कि इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट हो गया। सबके ऊपर प्रेशर ये रहता है कि इंजीनियरिंग कर लो सब जिंदगी बन जाएगा। आप सब तो इंजीनियर हो, इंजीनियर होने के बाद वो सपना जो लोग देखते हैं, तो आप लोग जब वो लोग पूछेंगे कि आपको क्या प्राइवेट जॉब नहीं मिला था या प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिल पा रहा था?
5: प्लेसमेंट में मिला था सर, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। और हमारा जो डिपार्टमेंट है कोर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और जैसे झारखंड है उसी तरह से यदि हम बिहार में देखें तो बिहार में रेगुलर रिक्तियां आ रही है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। लेकिन हम सब के साथ यहां पे होता है क्या कि पेपर में एक विज्ञापन आता है कि भर्ती जारी होने वाली है, तो हम सब उम्मीद में हो जाते हैं कि आएगी। उसके बाद जो आंकड़ा दिख रहा था हमें यहाँ पे RTI के माध्यम से, RTI भी हमने किया था, उसमें भी हमें देख के लगा था कि काफ़ी जो टोटल जो कैडर का स्ट्रेंथ है, जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, उसका आधा से ज़्यादा खाली है।
0: आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत गर्मी है यहाँ पे, उमस है बारिश की वजह से, कल बारिश में भी तिरंगा यात्रा निकली, इतनी गर्मी में भी ये लोग डटे हुए हैं। भाई कितने हो आप लोग, सारा ग्रुप कितना बड़ा है, कितने लोग हो जरा गिन लें एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब इंजीनियर हो? हाँ, 17, 18 लोग। 17, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, 17, 18 इंजीनियर्स हैं जो बेरोजगार हैं। हाँ, यहाँ पर इतने हैं, आप सोचिए कि झारखंड में ऐसे कितने लोग होंगे।
6: हजारों की तादाद में ग्रेजुएट इंजीनियर बेरोजगार है सर।
5: और हमने मुख्यमंत्री साहब से भी मुलाकात की थी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था, तो हाँ नौकरी निकलेगी।
0: फॉर अ लॉट ऑफ पीपल यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, नौकरी जो है वो एक एक पूरा आपका सामाजिक ताना बाना तय कर देती है कि आप कहाँ जाएंगे, किसके साथ उठे बैठेंगे, कैसे आपकी शादी होगी, कैसे चीज़ें होंगी। निराशा किस बात से ज़्यादा होती है कि सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो तो जाके क्यों नहीं कहीं और ट्राई करते हो, और जगह पे प्राइवेट नौकरी के लिए कोशिश कर लो।
7: सर अब जब आप तैयारी के जब 1-2 साल आप दे चुके हो ऑलरेडी इस फील्ड पे, ठीक है, अब जो आपको पता है कि सर पिछले बार मेरा 1-2 नंबर से नहीं हुआ था, तो मुझे को पता है कि सर इस बार होगा तो 1-2 नंबर से हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर आप वैकेंसी आएगा तो फिर तैयारी करेगा इसीलिए, तो फिर अभी जाएंगे सर तो एज ए फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोग को एज ए फ्रेशर्स, ठीक है। तो सर इसी वजह से हम लोग फिर दोबारा उस फील्ड में नहीं जाना चाह रहे, हम लोग इसी चीज़ में जाना चाह रहे क्योंकि अपने लाइफ का प्रीसियस 2-3 साल हम इस फील्ड में दे दिए सर, तो फिर वापस से बैकआउट करने का हम लोग पास कोई अति वो नहीं रहा है।
0: ठीक, अगर सरकारी नौकरी नहीं निकलती मिलती नहीं है तो फिर क्या करो?
8: सरकारी नौकरी की सर तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अभी रिसेंटली
0: साल हो गए
8: सर, मैं तो 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ JPSC की, और प्लस मैं इंजीनियर भी हूँ, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। तो मैंने जो लास्ट टाइम JPSC भी दिया था, मेरा मेंस कुछ नंबर से रह गया था, इस बार जब मैंने प्रीलिम्स दिया तो प्रीलिम्स ऑलरेडी मेरा हो चुका है, बट इतनी धांधली हो रही है कि मतलब इसमें भी कुछ होने का चांसेस नहीं है।
0: कभी ये प्रेशर आता है कि अब हो गया बहुत छोड़ो?
9: नहीं सर, जब भी मोरल डाउन होता तो परिवार वाले साथ देते हैं सर कि नहीं लगे रहो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसमें हो जाएगा सर।
0: यू नो दिस इज़ द स्टोरी विच यू विल कीप हियरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबसे अगर बात करूँगा तो इसी तरह की कहानी आपको सुनने को मिलेगी। दुख सिर्फ इस बात का है कि
10: एक फ्री और फेयर चांस नहीं मिल रहा है, एक ऐसा चांस नहीं मिल रहा है जिसमें वो अपनी काबिलियत के हिसाब से पूरी मेहनत करके ये कहेंगे कि हमने अपनी तरफ से कोशिश की और अगर नहीं हुआ तो हमसे बेहतर लोगों को नौकरी मिल गई। वो दिक्कत है कि जिसको नौकरी मिल रही है उस पर संशय है कि वो किस तरीके से नौकरी ले रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट दे डू नॉट हैव एनी ट्रस्ट इन द सिस्टम, अ सिस्टम विच इज सो रॉटन, अ सिस्टम विच इज विच हैज सो मैनी प्रॉब्लम्स, सो मैनी होल्स दैट even when somebody gets a job, there is no guarantee that that person who has got a job has got that job on his or her you know credentials, and that is what they want a change with.
11: The truth to ye hona hi chahiye, to jin ji ne andolan nahi karna chahiye agar aisa mai karunga nahi, लेकिन कैसे करना क्या करना डेमोक्रेसी में इसके तरीके भी बताए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमको जिन्होंने दिया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर दो स्पीचेस हमने पढ़ लिए तो ये कैसे करना क्या करना उसका उसमें इंडिकेशन है, वो देखना चाहिए। और हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जैन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
12: बिल्कुल
11: उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए,
12: करेक्ट,
11: तब सब ठीक रहेगा।
12: तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं,
11: जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है, ठीक हो जाएगी, करनी चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ।
12: ठीक है, और इसमें थैंक यू उत्तर के लिए, पर इसमें आप जब आपने बोला कि प्रोटेस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में करना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में करना चाहिए, अभी सर कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे, हाँ लोग हमें बोलेंगे saying that these people are agents of some country and so and so, तो सर इसमें
11: वो मैं कह रहा हूँ ना,
12: इसमें
11: मैं कह रहा हूँ कि जैन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है।
12: जी सर,
11: इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है, वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता,
12: आप क्या
11: विदाउट विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जैन जी जैन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है।
12: अरे वाह बढ़िया है,
11: और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है।
12: थैंक यू सर, ये आपने बताया इसलिए सबसे ऑनेस्ट जनरेशन जेन अल्फा है, लोग बोलते हैं कि बच्चे भगवान का स्वरूप है, तो आजकल के बच्चे जेन अल्फा है, जेन जी है। पर सर तो कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनके उनपे कई बार लाठी चार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था, तो ये सारे
11: अब
12: ये सारे विषय के
11: और एक बात,
12: हाँ आपको आपका क्या मानना ये होना चाहिए,
11: ये जो बातें है ना
12: जी,
11: ये क्यों हुआ क्या हुआ इसके कारणों में जाना पड़ेगा, जिसके लिए जो जानकारी चाहिए मेरे पास नहीं है, आपके पास भी पूरी नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है
12: जी,
11: लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं, आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था, वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो तो मैं जे एन जी पर विश्वास रखूंगा।
12: क्या बात है, वाह। अभी आपने एक चीज बताई जेन जी के बारे में कि आप वो ऑनेस्ट है, आप आंख बंद करके उन पे विश्वास करते हैं, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई एडुकेशन के बारे में और शिक्षा के बारे में। ये संस्था में 300 अभी शिक्षक बैठे हैं, प्रिंसिपल्स एंड ओनर्स ऑफ स्कूल्स, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन सर। एंड देयरफॉर आई वॉन्टेड टू आस्क यू दिस सर, कि 15 लाख स्कूल्स में अभी भी 1 लाख स्कूल्स है भारत में जहां हम लोगों के पास टॉयलेट्स की सुविधा बच्चियों के लिए नहीं है। तो सर बेटी गाइस लेट मी फिनिश द क्वेश्चन। तो सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अच्छा स्लोगन है, पर ये स्लोगन में बेटी पढ़ेगी कहां यदि उधर व्यवस्था ही नहीं है टॉयलेट की। तो सर ये एक सर दूसरा इसमें खाली दूसरा इसमें सर 15,000 स्कूल में अभी तक बेसिकली वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है। तो सर शिक्षा मैं मानता हूँ कई चीज़ हुई है शिक्षा में, बट शिक्षा में बहुत सारी चीज़ होनी चाहिए, और मेरे लिए तो ये नेशनल इमरजेंसी है क्योंकि देश को यदि विकसित बनाना है तो शिक्षा ठीक करनी पड़ेगी। तो आप ये मानते हैं कि दैट द नेक्स्ट जनरेशन टू बिकम स्ट्रॉन्गर वी शुड फोकस मोर ऑन एडुकेशन, एंड इफ सो व्हाट इज द वन एडुकेशन रिफॉर्म दैट यू प्रपोज सर?
11: पहली बात, एक से नहीं होगा, मैं 2-3 बताऊंगा।
12: जी सर।
11: पहला है कि शिक्षा ये कमर्शियल बिजनेस नहीं है
12: जी,
11: वो जीवन की नेसेसिटी है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो, सबको मिले, ऐसा उसका स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो इसमें तो बहुत सारा विचार करना पड़ेगा, फीस को लेके सारी बातें। दूसरा, शिक्षा हम सबकी रिस्पांसिबिलिटी है, तो जिसका काम वो ठीक करे वो होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो गड़बड़ है, उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन मैं अपने जगह क्या कर सकता हूँ, उदाहरणार्थ कई जगह कई स्थान है हमारे यहाँ, तो ग्रामीणों ने और कार्यकर्ताओं ने मिलके वहां के स्कूल को ठीक किया, तो ये ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी, तो गांव वालों ने थोड़ी थोड़ी संसाधन जुटाकर ये फैसिलिटीज उत्पन्न की। पास के शहर में किसी भले आदमी को पकड़ा, कंप्यूटर स्क्रीन उसने स्कूल में लगा दिए, ऐसा करके किया। अब शिक्षा का जो फाइनेंशियल बर्डन है, अगर समाज पूरा ध्यान देगा, क्योंकि ये शिक्षा सरकार की दी हुई वगैरह नहीं है, ये हमारे बच्चों की शिक्षा है, तो हमारे बच्चों की शिक्षा ठीक हो इसलिए हमको भी एक्टिव रहना चाहिए, विजिलेंट भी रहना चाहिए और असिस्ट भी करना चाहिए। ये अगर एक्टिविज्म हुआ तो ये सुधार बहुत जल्दी आएगा। बाकी जिनको शिक्षा देनी है उनका भी ट्रेनिंग होना चाहिए, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टीचर्स, ट्रेन दी टीचर्स, ये करना चाहिए। बाद में फिर पाठ्यक्रम वगैरह बातें आती है, बाद में कहते हैं नहीं, बाद में करने की नहीं है, साथ साथ करनी है। लेकिन बेसिक तो यह है कि शिक्षा हम अगली पीढ़ी बनाने के लिए दे रहे हैं, स्कूल चलाने या पैसा कमाने के लिए नहीं दे रहे, ये होना चाहिए। और हम सब लोगों का सहभाग उसमें होना चाहिए, सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए, तो ठीक रहेगा। ये दो बदल अगर हम करेंगे तो बहुत जल्दी बातें ठीक हो जाएंगी, ऐसा कुछ जो हुआ है थोड़ा सा इस दृष्टि से, उससे मेरा अनुभव है। और बोल ही देता हूं मैं, आप लोग भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लेंगे, 15 साल हो गए अब हमारी एक ताकत बन गई है, उसके भरोसे ऐसा अगर समाज को साथ लेकर शिक्षा में कुछ ठीक ठाक करना ऐसा आप लोग करने लगे तो इस प्रयास में और बहुत एक बड़ी प्रयास की मात्रा जुड़ जाएगी।
12: थैंक यू, थैंक यू। प्रयास ये रहेगा कि एडुकेशन में भी अभी ऑन ग्राउंड जाके स्कूल्स में क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी क्या करना है, कैसे करना है वो करेंगे। पर इसमें सर आपने टीचर्स के बारे में बात की, तो जस्ट वन क्विक फॉलोअप इसमें कि 10 लाख टीचर्स की वैकेंसी भी है आज की तारीख में, ये बात सही है कि 1 करोड़ टीचर्स है बट 10 लाख टीचर की वैकेंसी है सर? तो ये मैं मानता हूँ, और मैंने जब ये पूरा आंदोलन हुआ था तभी मैंने एक प्लैकार्ड लिया था, नॉट फॉर CJP नॉट फॉर BJP, आई एम फॉर एडुकेशन हाउ मेनी लाइक मी, ऐसा करके मैंने सर लिया था। तो पर सर इसमें सुझाव हम लोग ने दिया था कि प्लीज फॉर्म अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड वो कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई जो ए पोलिटिकल कमिटी है सर। पर 2024 में भी ऐसी कमेटी बनाई गई थी, राधाकृष्णन सर की कमेटी। ये कमेटीज बनाते रहते हैं हर सरकार सर, पर सर कोई सरकार ने 6% अब तक एडुकेशन को बजट नहीं दिया है। तो सर मैं आपके माध्यम से, बिकॉज नेशनल मीडिया आपके कारण हमें भी देख रही है, तो आपके माध्यम से डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड पे मोर अटेंशन टू एडुकेशन सर?
13: क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं।
12: बढ़िया है,
13: हम तो एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन मांग उचित है ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब सरकार के द्वारा ठीक इम्प्लीमेंटेशन हो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, केवल वो करने से नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी ने कहा नहीं कि सरकारी पूरी शिक्षा चला है, तो हम सब मिलकर तो चला सकते हैं। स्कूल चलाने का एक बहुत बड़ा प्रयास हमारे कार्यकर्ता भी विद्या भारती संगठन के माध्यम से कर रहे हैं, तो क्योंकि 23,000 अच्छे स्कूल चलते हैं बहुत प्रांतों में, उसका एक प्रेस्टीज है। तो ये तो कोई बजट वगैरह के भरोसे नहीं हुआ है, अपने नई पीढ़ी के बारे में चिंता और उसके चलते प्रयास इसी से हुआ है। मुझे लगता है ये स्पिरिट जगाने की आवश्यकता पहली है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अगर ये हुआ तो जनता में एक मूड बनेगा, और कोई सरकार या कोई पॉलिटिशियन जनता को इग्नोर नहीं कर सकता, तो बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा।
12: बिना आंदोलन के भी ये हो जाएगा और 6% बजट मिल जाएगा।
13: मिल जाएगा,
12: अरे वाह, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर दैट दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी रेजोनेट्स विद, हु बिलीव्स ट्रूली इन द कॉज ऑफ एजुकेशन।
13: यस,
12: थैंक यू। पर सर एजुकेशन के अलावा जेन जी और जेन अल्फा को बहुत अनेक अन्य चीज इन्फ्लुएंस करती है, उसमें से एक बड़ी चीज जो मैं मानता हूं जो आंदोलन में भी देखा गया वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के वीडियोस बहुत प्रभावित करते हैं। अभी इंस्टाग्राम पे सर ऐसा ही है, एल्गोरिथम जैसे चलते हैं, तो मतलब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के वीडियो लाइक कर लो तो आपको एक ही तरीके की विचारधारा मिलेगी, आप राहुल जी की वीडियो लाइक कर लो तो दूसरी तरीके की विचारधारा मिलेगी। तो इसमें जो बच्चों का जो हो रहा है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर पोलराइज्ड। तो सोशल मीडिया पे जो रील मॉडल्स भी है, तो एक तो ये पोलराइजेशन का विषय है, और दूसरा है सर जब मैं क्रिकेट देखता था तभी मेरा रोल मॉडल राहुल द्रविड़ था, तो वो सर 100 बॉल में 1 रन बनाता था, सब लोग ताली बजाते थे। सर अभी जनरेशन बदल गया है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जनरेशन है, वो लोग को लाइक तुरंत चाहिए, वो लोग को चीज तुरंत चाहिए, क्योंकि वो लोग के जो रील मॉडल्स है जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं वो वैसे है। तो हम लोग दोष ठहराते हैं जेन जी को जब भी कुछ गलत बोलते हैं वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, जो वो बोलना नहीं चाहिए, पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम सोशल मीडिया और समाज का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो हाउ शुड इंडिया टैकल सोशल मीडिया? अन्य देशों ने तो बैन कर दिया बिलो दी एज ऑफ 16, ऑस्ट्रेलिया है, फिनलैंड है वगैरह, तो बैन करना चाहिए या दूसरा कुछ तरीके से उपयोग करना चाहिए इसका?
13: आपके प्रश्न में ही उत्तर है। नियम बनाना, डिसिप्लिन बनाना, ये ठीक है, लेकिन ये तब यशस्वी होता है जब एटीट्यूड बदले। तो कानून तो बहुत बने हैं, उनका क्या हो रहा है? तो समाज माने तब कानून चलता है। तो आपने बताया कि रोल मॉडल वैसे है, रोल मॉडल तो पहले पीढ़ी के वो वैसे है, तो रोल मॉडल को बदलना पड़ेगा अपने आप को, है ना। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है, ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोज वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी

0: बात को बैन करो आप तो वो दो नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज्यादा जोर से चलती है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर देना पड़ेगा सरकार सहित, तो तभी ये काम होगा।
1: सर अभी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, वो डायलॉग जो था अभी इंस्टाग्राम का मीम बन गया जैसे, मतलब वो पोस्टर बन गया, पर ये पोस्टर से निकल के एक्चुअल में परंपरा सेम रहनी चाहिए। एंड ये आपने जो बताया दैट सही रोल मॉडल्स चुनने चाहिए, पर इसमें एक चीज है जो ज्यादा हेट करता है, ज्यादा वायलेंस करता है तो उनको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, उनको ज्यादा लाइक्स मिलते हैं। आज शायद से राहुल द्रविड को T20 टीम में मौका भी ना मिले, तो जमाना थोड़ा बदल गया है, तो इसमें नए रोल मॉडल्स को सामने कैसे लाए?
0: अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, ऐसा भी हम कहते हैं ना, वही यानी जैन जी वगैरह वगैरह सब, दे डोंट सब्सक्राइब टू वायलेंस, देन व्हाई दे बिलीव इन द रोल मॉडल्स विच आर वायलेंट, ये हमको विचार करना पड़ेगा। सो वी हैव टू डिसाइड मेरा पर्पस क्या है, मेरा क्या है, उसके अनुसार हमको विचार करना पड़ेगा। तो वहां एक बात, यहां एक बात, ऐसा तो नहीं चलेगा।
1: दूसरा विषय इसमें, इट इज इंडियाज इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस। यहाँ पहले रोमे और अन्य देशों से कई एम्बेसडर्स, कई व्यक्ति आए हैं, स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि हमारे बाजू में दो देश है जो हमारे खास मित्र है, पाकिस्तान और चीन, और ये दो देशों हमारे साथ काफी बार लड़ाई होती रहती है। जब लड़ाई होती है तभी भारत में विचार ऐसा आता है कि वी शुड नॉट टॉक टू देम दैट बिकॉज दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अस। व्हाट इज योर टेक ऑन सिविल टू सिविल, सिविलियन टू सिविलियन टाइज इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन अदरवाइज, शुड दे कंटिन्यू एंड इफ सो हाउ?
0: इन द टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वी हैव टू गो विथ व्हाट एवर अवर गवर्नमेंट मिलिट्री डज, but that should not sever the ties which are already there. You have given two examples, Pakistan and China. China people say that for 2000 years Bharat has given us some values and Pakistan was Bharat less than 100 years before. This should not be forgotten. These ties cannot be severed. They can put at hold till conflict is there. But what is the solution? Bharat solution. Bharatiya solution is not conquering or obliterating others. To form that harmonious assimilating process, that requires dialogue. So conflicts may halt all these relations, but they cannot sever. They should not. Sometimes, after resolution of conflict, we have to take up the sutra from where we have left it, and we have to continue. So permanent enmity, permanent hatred is not the solution. When there is some trouble, we have to look after it, and there is a way to look after it. We have to be all for that way. But that is a temporary thing. It comes due to politics. It is not that the Pakistanis are wholeheartedly enemies of Indians. That is not the way, or Indians are like that. It is not there. But states, politics, international borders, that is also there. That is a fact of life. So during conflict, we are with our government. We are with our military. But we know that sometimes it has to cease and we have to be one. Because humanity is one.
1: How lovely. Humanity is one. And therefore, sir, I think Bharat can be both Vishwa Mitra and Vishwa Guru in that sense. But, and we can hopefully unite the world because we are not looking to conquer any other country, but we are looking to unite. So, sir, spasht puch leta hu ek bar. Aaj ki tarikh mein civil society ko Pakistan aur Chin कि जो स्टूडेंट्स है या फिर नॉर्मल सिविल सोसाइटी है उनके साथ संबंध रखना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हाँ या

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
11: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
12: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
11: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
14: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
5: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: इट्स 40% ऑफ आर नेशनल इनकम सर. तो सर अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफी चर्चा होती है. वॉट इज योर टेक ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉट शुड समाज डू एंड वॉट शुड सरकार डू अबाउट दिस?
1: नाउ एक माइंडसेट हमको बदलना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली जॉब्स, इट इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज ऑल्सो स्किल्ड वर्क. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है, समाज में माइंडसेट ऐसा है कि हाथ से जो काम करता है उसको प्रतिष्ठा नहीं है. अब 4 लाख रुपया मेरे पास है, 4 लाख रुपए का चावल गेहूं किसान के पास है, मैं और वो किसान किसी ऑफिस में गए एक साथ, मेरे 4 लाख खाने से पेट नहीं भरता, उसका गेहूं चावल खाके मैं पेट भरता हूं, लेकिन मेरी इज्जत ज्यादा है, मेरे पास कैश है. उसके पास कैश जिसके लिए वो है उसकी इज्जत नहीं है. ये हमको, इसको कहते हैं श्रम प्रतिष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर, वी हैव टू रिगेन दैट. वो नहीं है और इसलिए एवरीबडी रन्स आफ्टर सम सर्विस जॉब, प्रेफरेबली गवर्नमेंट सर्विस, प्रेफरेबली इन हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, प्रेफरेबली नियर हिज होम ऑफिस शुड बी देयर, एंड एवरीबडी रशेस एट द सेम डोर एंड नो वन गेट्स इन, व्हाइल देयर आर फील्ड्स वेयर इज वर्कर्स आर नॉट अवेलेबल. आई ऑल्सो सी वट वी कॉल मीनियल जॉब्स, डूइंग दैट पीपल हैव अर्न्ड वेल्थ, देर आर बिल्डिंग्स, पांठेला वाला, पंक्चर वाला, ऐसे लोग. एक बच्चा 8वीं में पढ़ाई छोड़ के होटल में काम कर रहा था, एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने उसको पूछा, उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं है लेकिन कमाना है, तो क्या करना चाहते हो? पांठेला. तो उसने पांठेला चलाया. वो उस समय 8वीं में था, अब तो जवान हो गया, शादी, लड़के बच्चे हो गए. 29 लाख की प्रॉपर्टी है उसकी पांठेला चलाते हुए. दैट रजिस्ट्रार ट्रेंड हिम फॉर 1 ईयर टू रन ए पांठेला. ऐसे है, ऐसी एक उदाहरण. उस रजिस्ट्रार ने 400 लोगों को तैयार किया है, ही इज इन महाराष्ट्र. ऐसे बहुत उदाहरण है सर्वत्र. तो एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, श्रम प्रतिष्ठा चाहिए. सब लोग जॉब्स में ही जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है. अच्छा लाइफ इससे मिल सकता है, लग्जरियस लाइफ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है. अब हमको बहुत पैसा चाहिए, आराम से चाहिए, परिश्रम नहीं चाहिए, ऐसा अगर हम सोचेंगे तो ऐसा होगा कि स्वर्ग में जगह चाहिए, अमृतपान चाहिए, रोज ये चाहिए और परिश्रम कुछ न करना पड़े, तो वो सपने तो सबके सफल नहीं होते. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जा सकती है अगर हमने जॉब को ऊपर नीचे देखना छोड़ दिया. और हमने छोड़ दिया ने, मैं जॉब के लिए प्रयास कर रहा हूं, मेरी सवाल नहीं है, सोसाइटी ने छोड़ना चाहिए. जो कमा रहा है उसकी प्रतिष्ठा है, हाथ से कमा रहा हो, जॉब में कमाता हो, सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, अपना उद्योग चलाता हो, कुछ भी चलाता हो, एजुकेशन में इसकी तैयारी चाहिए.
0: आप बढ़िया आपने बताया ये. पर रिजर्वेशन, ये एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में एक मुद्दा मेन है जो है रिजर्वेशन सर. और रिजर्वेशन जब से चालू हुआ है, इट इज इम्पोर्टेंट टू गेट रिजर्वेशन टिल द लास्ट पर्सन, बिकॉज द वंस हु डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटीज डिजर्व द रिजर्वेशन. बट शायद से अंबेडकर जी ने भी नहीं सोचा होगा कि रिजर्वेशन अब तक कंटिन्यू हो रहा है. आई एम जस्ट फॉलोइंग अप ऑन दैट, क्योंकि आपने ये बोला है. तो फॉर जनरल पॉपुलेशन सर, द थिंग इज सर, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, एक राजनीतिक विषय बन गया है. एंड एक्चुअली जो टॉप 1% ऑफ SC ST है सर, दे हैव बिकम द क्रीमी लेयर, जैसे OBC में हुआ है. और सर वो ही सारे रिजर्वेशन ले लेते हैं. तो जनरल कैटेगरी के बच्चे जैसे मैं हूँ सर, मेरिट में अच्छा था, इतना अच्छा भी नहीं था, पर मेरिट में अच्छा था, पर सर कट ऑफ लिस्ट में मेरा नाम लास्ट आया. तो सर मैं खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक इट इज अ it should be lifelong, or do you think now it is perhaps time in order to curtail reservation and bring it back, both in employment and education, sir?
1: I will not answer you directly, आई विल आस्क यू टू गो टू वॉट डॉक्टर बाबा

0: कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशन दैट दिस इज फॉर अवर अपलिफ्टमेंट, दिस इज नॉट द परमानेंट मेजर एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इंप्रूव अवर सेल्फ एंड मेक दिस यूजफुल फॉर अदर्स दोज हु हैव नॉट गॉट येट। ये वहां स्ट्रीम है, उसको एनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इंप्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई, इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली, इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु विल्ड दिस वर्ड दे आर विल्डिंग इट रॉन्ग वे इंटेंशनली। अनलेस दैट इज क्योर्ड, आई डोंट सी एनीथिंग।
1: आई एम सो ग्लैड दैट यू सेड दिस, कमिंग फ्रॉम समबडी लाइक यू, आई एम श्योर द कंट्री इज लिसनिंग। बट एक आखिरी प्रश्न जो था वो पर्यावरण पे है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज समथिंग दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट इन आर कॉन्फ्रेंसेस। 108 कॉन्फ्रेंसेस करते हैं सर एक साल में, आप जानते हो, और बाद में ये आखिरी का कार्यक्रम होता है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में एवरीबॉडी इज वेरी पैशनेट इन जेन जी एंड जेन अल्फा, एंड दिस इज अक्रॉस, मुंबई में भी है, मदुरई में भी है, ये छोटे शहर में है, छोटे बड़े शहर में सेम समस्या है। वो लोग बोलते हैं कोई भी सरकार है सर, भाजपा है या कांग्रेस है या राष्ट्रवादी है, जो भी है, जब भी हम लोगों को आवाज उठाना है कि आप पेड़ पौधे क्यों काट रहे हो, यू कैन बिल्ड द रोड इन अ डिफरेंट मैनर, एंड सरकार नहीं सुनती, तो सर क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारी आयु अभी जो बैठे हैं, तो हमारी आयु है 15, 16, 17, 18, 19, तो आपका क्या सुझाव है? व्हाट शुड यंग इंडिया डू व्हेन दे बिलीव सो मच इन क्लाइमेट चेंज बट समटाइम्स गवर्नमेंट्स डोंट बिलीव एज मच इन क्लाइमेट चेंज?
0: गवर्नमेंट्स इज अ डिफरेंट थिंग। एनी वेयर गवर्नमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, इट हैज टू एक्ट इन सो मेनी प्रेशर्स। सेकेंडली, द अवेलेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज इटसेल्फ अनसस्टेनेबल, दैट इज व्हाई दे हैव टू प्लान फॉर सस्टेनेबिलिटी गोल्स, एंड द ओनली कंट्री विच फुलफिल्स दैट गोल्स पर ईयर इज भारत। एवरीबडी एल्स टॉक्स ऑफ दिस पर्यावरण and never acts on it. We have to change the model. As you said, development can happen without harming Paryavaran. That is true. But that way is with us and we are not treading on it. So we have to change our development model. That is the basic thing. Without that, no government can act fully for the Paryavaran. Some lapses will be always there. Now, this requires a tremendous pressure, which should come from the society. If society has to create the pressure, society has to act on Paryavaran. So, possible successful way, I see that we should start from our own home, with small things. Jaise ek program ab hum leke ja rahe hain samaj mein, pani bachao, plastic hatao, ped lagao. सो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी, अपने घर में पानी, अभी बहुत सी जगह आदत है खिड़की दरवाजे बंद कर लेना और लाइट लगाना। फिजिक्स का क्लास चल रहा था तो ठंडी हवा आने लगी, इसलिए सब खिड़कियां बंद की, और अब गर्म होने लगा इसलिए पंखे चलाए। तो प्रोफेसर ने कहा दिस इज कॉल्ड सिविलाइजेशन। ऐसा हम कर रहे हैं। हम अगर अपने घर से शुरू करते हैं कि शॉवर के नीचे कितने कितने देर रहना, 45 मिनट, एक घंटा लोग रहते हैं, 15 मिनट में पूरा काम हो सकता है। स्नान के लिए पानी कितना चाहिए, तो जो एक्सट्रीम पर्यावरणवादी है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके हाफ ए बकेट साबुन वाबुन लगा के सब, लेकिन ठीक है, एक बकेट दो बकेट बहुत हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का कैसा होता है, अनावश्यक लाइट कितनी होती, शादी ब्याहों में कितना

0: एक्स्ट्रावेगेंजा होता है। ये सारी बातें हम करते हैं, एक तरफ वो करते हैं, दूसरी तरफ ये करते हैं, और इसलिए क्या होता है कि हमारे कहने का प्रभाव नहीं होता है। तो इसलिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अवर होम, तो अवेयरनेस होगा। अभी अवेयरनेस बहुत अच्छा आ गया है और बढ़ना चाहिए। इसके बाद समाज प्रेशराइज करेगा, नहीं तो क्या होता है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, पहाड़ नहीं धसने चाहिए, इसलिए प्रोजेक्ट बंद करो, ऐसा कहने के बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए जनता उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। अब दोनों चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। तो फिर हमको मॉडल बदल के काम करना पड़ेगा। अगेन मॉडल बदलना है तो दुनिया के उल्टा जाना पड़ेगा। उल्टा जाना पड़ेगा तो पहले समाज में मॉडल्स चाहिए, तब किसी की हिम्मत होगी उस पर चलने की। ये सब करना पड़ेगा और ये स्टार्ट हुआ है। इनमें करो ऐसा आपको नहीं कह रहा, आप भी करो, हमने शुरू किया है, हमने ऐसे मॉडल्स भी खड़े किए हैं, डेवलपमेंट विद पर्यावरण, हमारा ग्राम विकास उसी प्रकार से चलता है। तो ऐसी कई बातें, अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था तो देश भर के कई सारे आर्थिक दृष्टि से प्रयोग करने वाले लोग आए थे, तो अबाउट 500 वेयर देयर, यानी वेयर स्पॉटेड, उसमें से 39 को सिलेक्ट करके बुलाया, वो उनका वृत्त हुआ, उसमें सब लोग थे स्वयं करने वाले। तो ये शुरू हुआ है, हमको भी उसमें हाथ लगाना चाहिए। द टाइड विल टर्न वंस द ओपिनियन इज फर्मली प्लांटेड इन द पब्लिक माइंड एंड पब्लिक डज व्हाट इट कैन डू इन देयर ओन होम, तब बदलेगा। बदलना तो पड़ेगा,
1: बदलना तो पड़ेगा। एंड मैं मानता हूं, जैसे आपने बोला पब्लिक मोमेंटम और पब्लिक प्रेशर बना रहेगा और खुद वो लोग भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली और पॉलिसी बनेगी और सिस्टमैटिक प्लानिंग हो पाएगा, ये आप बता रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये भारत में तो कुछ नया नहीं है, इट इज समथिंग दैट वी हैव बीन वर्शिपिंग द एनवायरमेंट मच। पृथ्वी सूक्त में, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त में पहली बार देयर वाज अ हिम इन रिगार्ड्स टू प्रोटेक्टिंग नेचर एंड वर्शिपिंग नेचर, एंड वी यूज टू वर्शिप नेचर बिफोर वी यूज टू वर्शिप गॉड्स। बट सर, आई ओनली होप दैट जो आपने आज जो बताया है, क्योंकि आपने बताया है, बच्चे तो सुन रहे हैं बट एवरीबडी एल्स इज ऑल्सो लिसनिंग अक्रॉस द कंट्री, एंड आई रियली होप दैट द मैसेज स्प्रेड्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव मेंशनड अबाउट एजुकेशन, अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट ऑल ऑफ दीज इशूज एक्चुअली गेट्स इम्प्लीमेंटेड। बिफोर आई लेट यू गो, बिकॉज आई हैव यू, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है संस्था के ओर से और संस्था से जो सब जुड़े हैं, जो बैठे हैं उनके ओर से। 100 साल से आप मैन मेकिंग कर रहे हैं, हम छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, व्हाट आर द 3 qualities दैट यू थिंक लीडर्स ऑफ टुमारो शुड हैव इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड? 3 qualities यदि आपको लगती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए।
0: देखिए, लीडरशिप के लिए पहली बात है, You have to lead from within, lead by example. तो leadership यानी teamwork चलाना है। Leadership कहने के बाद हमारे सामने वो चित्र आता है, सामने आ रहा है, भाषण कर रहा है, चुनाव जीत रहा है, लोगों को उपदेश कर रहा है, इससे नहीं होता है। Real leaders are those who remain behind. They work from within.
1: Sir, that is sorry to interrupt you. That is why we have you today here. That is why we requested you as the chief guest here.
0: I don't see myself as leader, as a worker. But anyway, secondly, leaders' behavior. There are 5 qualities.
1: जी.
0: शास्त्रे त्यागी, पात्रे त्यागी, रणे रागी, भागी परिजनैः सह, सो ही नोज ऑल द थिंग्स एंड ही एप्रिशिएट्स क्वालिटीज। पात्रे त्यागी, गुणे रागी, एप्रिशिएट द क्वालिटीज, ही शेयर्स, भागी परिजनैः सह, शेयर्स विद ऑल अदर्स व्हाट एवर ही गेट्स, कीर्ति प्रसिद्धि, सक्सेस, मटेरियल गेन्स, ही शेयर्स। शास्त्रे बोद्धा, ही नोज द साइंस। रणे योद्धा,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर NDTV 24/7। बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर NDTV। बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवरेज। बेस्ट पॉडकास्ट शो ऑफ द ईयर NDTV कंट्रोल ऑल डिफेंस। बेस्ट प्राइम टाइम एंकर ऑफ द ईयर सैयद सुहेल। बेस्ट फीमेल एंकर ऑफ द ईयर वसुधा वेणुगोपाल। बेस्ट ऑन ग्राउंड कवरेज ऑफ द ईयर ऑपरेशन सिंदूर कवरेज। NDTV, द नेटवर्क ऑफ इम्पैक्ट।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: The front lines of Kargil, the beauty of

0: कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कुछ नहीं। यहाँ धरना है, हम युवाओं के साथ हैं, युवाओं के जो भी मांग है हम बात करेंगे और विकल्प के रास्ते हम लोग खुले रखे हैं।
1: बेवजह का नाटक, आपको झारखंड की छवि खराब होने की प्रॉब्लम है वहां पर, कि यहाँ पर अगर वहां पर 500,000 बच्चे निकल कर आए हैं, यू आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द इमेज ऑफ झारखंड रादर देन द फ्यूचर ऑफ द किड्स हू आर सिटिंग
2: देयर। आई थिंक दिस वाज अ क्वाइट अ इररिलेवेंट एंड अब्सर्ड यू नो स्टेटमेंट।
1: सर, ही इज अ मिनिस्टर देयर।
2: आई नो ही इज अ मिनिस्टर।
1: डू यू नो दैट इन द लास्ट 24 आवर्स वन मिनिस्टर सेड वी हैव फॉर्मड अ कमिटी ऑफ पीपल हु वाज गोइंग टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, अनदर मिनिस्टर सेड वी हैव फॉर्मड अ कमिटी टू कीप एन आई ऑन व्हाट इज हैपनिंग। हाउ सीरियस इज द गवर्नमेंट? यू आर सेइंग दे आर सेंसिटिव। हाउ सीरियस डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज?
2: लेट्स टॉक अबाउट, आई विल गिव यू अ एग्जांपल अबाउट उत्तर प्रदेश एज वेल मैम।
1: जस्ट बिफोर
2: कमिंग टू झारखंड, in Uttar Pradesh alone, 28,368 schools have been shut down by this government. You know, 1 lakh students, 1 crore students are being deprived of primary education in Uttar Pradesh itself, and 21 paper leaks have been done in Uttar Pradesh since Yogi Adityanath's tenure.
1: So you will protest only in Uttar Pradesh?
2: No.
1: Jantar Mantar.
2: Now let me come to Jharkhand.
1: Yes.
2: Whatever this gentleman has said, you know, it's not that ki any person. Talking or stating from the opposition, we are going to support it. If something is wrong, it's wrong.
1: Where, sir? When will this support happen?
2: Nahin, it
3: sir,
2: will
3: it's
2: happen.
3: Not, I believe it's not a Jharkhand versus UP question.
2: Not at all.
3: When it's about resources, we go to Jharkhand, but we deny and we fail to see how many students are suffering, what are the repercussions in terms of healthcare for students who are coming from tribal areas, that we dismiss.
1: Don't pit one state against another. Yes, that lady in red.
4: I have a simple point, like right from, you know, today we are sitting at 12th day of the Jharkhand protest, right? And the CGB protest, it went for 34 days approximately. So these are two, you know, uncomparable parameters, first thing. Next is, right from day one of the CGB protest, we had words like anti-nationalist, anarchs. Why are these words not being used against the students who are protesting right there at Jharkhand protest?
2: I think you should ask this question to the BJP supporters.
1: No, good point.
2: They were the guys who initiated this.
1: The difference is the difference.
4: I think he's a single time against the students who are protesting at Jharkhand.
2: Yes. I think he's the right
5: valid question. Thank you.
6: Pathmija, ye question agar valid lag raha hai, to main inhi bachchon se puchunga. झारखंड के बच्चे, एक बच्चे ने आज तक किसी के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है? झारखंड के एक बिल्डिंग
2: लैंग्वेज का भी नहीं हुई।
1: मेरी बात
2: जब आपने वाटर कैनन चलाया, जब आपने लाठी चार्ज किया, जब आपने
6: सीजेपी का प्रोटेस्ट किसी नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं शुरू हुआ था। फैक्ट सबसे पहले सीजेपी, एक कमेंट आया सीजीआई का, उसके बाद ये आया, और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ वो मैं आज तक कहता हूं कि वो इररिलेवेंट है, उसकी बात अभी नहीं करते। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो आपने पूछा, झारखंड का कोई भी बच्चा, क्या उनमें से किसी के ऊपर ये सवाल है कि वो कहां से आकर खड़े हो गए, कौन से स्टूडेंट हैं? वो वहीं के स्टूडेंट हैं, और उनमें से कोई भी, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भी मत बोलिए, हम उनको गाली नहीं दे सकते, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं, हम सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। यहां क्या कह रहे थे? यहां नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी सरकार को जो गालियां दी जा रही थी, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता। यहां बाकायदा जिस तरह की फोर्सेज उसमें थी, और क्या अमृतसर पुलिस, वो तो आम आदमी
1: सर्कमस्टेंसेस अलग है यहां पर।
4: गालियां दी गई 20 तारीख के बाद, जब बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ, पैलेट गन का यूज हुआ, उसके बाद गालियां निकली।
6: आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल जो अमृतसर पुलिस कह रही
1: है। ओके वेट, अभिजीत
6: सिक्योरिटी,
1: ओके वेट, अभिजीत रिस्पांस देन अभिजीत, देन दिस यंग लेडी। यस,
7: कैन आई जस्ट रीड आउट सौरव दास's ट्वीट फ्रॉम द 13th ऑफ अक्टूबर 23, चीफ 23 Saurav Das, the Chief Justice of Pakistan has said, we have seen what they have done to their constitution. I don't know what they are going to decide Article 370. Let us see the independence of the judiciary there. Then he adds, it's a long quote. The world is watching the Indian Supreme Court is an open, Article 370 is an open shut case, a grave assault on the Indian constitution.
1: What's your point?
7: The point is, what about this fellow doesn't sound anti-national to you.
5: Okay, I'd like to comment.
1: So you're saying
7: then one second, I haven't finished. Arundhati Roy says that India's liberation of Goa is a colonialism. She says that India is a colonial oppressor in Kashmir.
5: CGP,
7: that doesn't sound anti-national to you.
5: May I come in?
7: So I'm sorry, but if you associate with a certain kind of people, the fundamental thing is that anti-national tag will be applied.
5: Padma Jaji, I'd like to come
4: Huda.
5: In. See, honestly, you're not going to nitpick Saurabh Das or Arundhati Roy or any of these people and malign the protest. This was about the students. Students were literally hit with shock batons, pellet guns,
7: after
5: all of that.
7: They violated charges.
5: The world
7: 144.
5: Has seen it. Allow me to speak. Please don't heckle. Allow me to speak. At this point, I'd like to mention to the BJP, jab zulm ke andheron ka zor badhta hai, jab zulm ke andheron ka zor badhta hai, tab haq ki sada aur buland hoti hai. Har सर झुकाने से इज्जत नहीं मिलती, सर झुकाने से इज्जत नहीं मिलती, हक की खातिर उठना ही हिम्मत होती है. दिस हिम्मत वॉज शोन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, एंटायर इंडिया, एंटायर वर्ल्ड विटनेस इट. सीजेपी स्टूड फॉर द राइट ऑफ द स्टूडेंट्स, सीजेपी स्टूड फॉर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हिच इज राइट टू डिसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट. नाउ इफ यू आर गोइंग टू
7: राइट टू प्रोटेस्ट डज नॉट इन्वॉल्व द राइट टू रायट अनाउंसिंग यू आर गोइंग टू मार्च इन पार्लियामेंट एंड वायलेट सेक्शन 144 इज नॉट द राइट टू प्रोटेस्ट. No, no, it was
5: my
7: a,
5: brother,
7: it was
5: please
7: a
5: don't
7: calculated
5: heckle. Please don't heckle.
7: Riot.
5: Please don't heckle.
7: They are rioters.
5: I did not heckle. Please don't heckle.
7: You did heckle. They are rioters.
5: Manage, please maintain the decorum of the debate. Thank you.
7: They are rioters.
5: As far as the Jharkhand protest is concerned, the question should be asked by the BJP because they are the ones sitting in power at the center. As far as Jharkhand government is concerned, they did not. They are ready to talk to the students. They are not going to, water cannon, lathi charge, bait and shock them. The students are in conversation with the ministers out there, with the government out there, number one. Number two, everybody supports the students in Jharkhand. It's not like the opposition is opposing the protest. It is not like the opposition is speaking against the Jharkhand students or even the...
1: Ma'am, you don't have to oppose a protest. Go on. You don't have to oppose a protest. You only have to show solidarity. Even in Jantar Mantar, it was never about opposing or agreeing with the protest. It was purely about showing solidarity.
6: One line, 30 seconds. बच्चों की नौकरियां बिक जा रही हैं. सरकार नौकरी बेच रही है. और इस तरह से
1: और वहां पर बहुत
6: कमाल की बात है. झारखंड और जंतर मंतर को उसका कोई कंपैरिजन है? जंतर मंतर पे आए हुए लोग
2: कोई कंपैरिजन नहीं
6: है. उड़ के आते हैं कोई बैकग्राउंड नहीं पता है कुछ नहीं पता.
5: माय क्वेश्चन टू द बीजेपी, इज ब्रेव एंड डिसमिस.
8: Sir, I have a question from you. You just said that CJP protest was irrelevant, like jis tarah wo aage bada, it was irrelevant. Can you just list the facts ki wo irrelevant kaise tha? The students were compelled to come on streets that are supposed to study in classrooms.
5: Bravo.
8: How was it irrelevant?
6: CJP protest agar relevant hota to desh ke kisi bhi student ki problem unko apni problem lagti.
8: Sabko majority.
6: CJP ne is एक सीजीआई के कमेंट का इस्तेमाल करके उसको एक गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल किया. उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं. लेकिन क्या सीजीआई ने देश के किसी और हिस्से में स्टूडेंट्स के लिए जो इश्यूज थे उस पर कोई बात की? जवाब है नहीं. दीप के, सौरभ दास, राका, ये एक तरह की अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग कर रहे हैं. ये पहले आम आदमी पार्टी के साथ थे. इनको जो व्यूज हैं वो बहुत ही वो एंटी नेशनल तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, लेकिन उनके जो व्यूज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज हैं.
5: इररिलेवेंट सपोर्टेड द सीजेपी. कम ऑन,
6: सीजेपी इररिलेवेंट राइट नाउ. दे आर इररिलेवेंट.
5: सीजेपी इररिलेवेंट था तो इस्तीफा क्यों हुआ है? सॉरी
8: सर, यू आर चेंजिंग द स्टेटमेंट. अर्लियर यू सेड दैट इट वाज इररिलेवेंट. अब आप कह रहे हो कि इट इज नाउ इररिलेवेंट. चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी for traveler for in travel and in accommodation due to these retest and jo itne bhi paper wapis ho rahe, and you are saying that it is irrelevant.
5: Brilliant.
9: Before anything sir, again, I would like to ask one question to you. Firstly, a fact that are you considering CJP protest and student protest as synonymous? Because if you say that the protest was not relevant, you mean to say that all of the problems that were raised by the students are irrelevant, which then makes the situation altogether what you're saying irrelevant.
6: There are many layers in that protest. You all need to understand that. CJP jo kar raha hai, wo uska apna political motive hai. They are curated by some external forces. Student protest genuine है. उनकी जितनी demand है वो genuine है. Paper leak genuine है. उस पर होने वाली जो सरकार ने जो action लिया वो genuine है. लेकिन आप CJP को कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, they are politically curated by external forces.
9: Thank you for that. So you mean to say that the student protest is genuine, and I agree with that.
6: Yes.
9: One thing that we have to talk about today is that till the time CJP was doing protest over here, Right. It was genuine and it was a student protest. Right. Everybody was coming in support, be it the opposition, whatsoever. Now, ma'am, that you sit here and say that we are talking about it and we are going to talk about it. We want that the CJP does also, if it has a popular movement, if it has our mass mobility, it should go there as

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा। सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: किसी कहीं पर एक इंस्टीट्यूशन में कहीं
6: झारखंड है सर, झारखंड का नाम ही आदमी भूल जाता है तो झारखंड बोलिए।
7: When Rajiv Sonam Wangchuk reached out.
8: Sonam sir, आपके प्रेरणा से इतना बड़ा कदम उठाए हैं और इसका असर पूरे संपूर्ण झारखंड के साथ देश पर असरदार हुई है, देश का केंद्रबिंदु बना है यह प्रदेश। आप लोग भी पहल करिए और सोनम वांगचुक सर से एक बार लाइव में बात करा दीजिए। हम पूरा आप लोग का चैनल की टीम से हम आग्रह करते हैं।
7: Jantar Mantar to Jharkhand, the buck stops here.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाह मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service. Modo Elite.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: Rena tu sataranga,
1: jo hona hai,
0: wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura, sada sada sada muskura. Rang rang rang rang rang rangine rangine re de. Kaise bhi ho din, rang bana rahe.
2: Bojo paints, rang bana rahe.
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों से सरसों। From the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
3: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
9: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है।
10: को प्रेजेंटेड बाय बर्ज पेंट्स, रंग बना रहे।
4: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
11: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
12: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: P-Mark, the mustard specialist since 1933. Barson se sarson.
5: Kuch to baat hai is dil mein.
13: Sab ke liye takhode laga de.
11: Toh bhi baarish ke bina.
13: Ab thik. Rajdhani besan, swaad ke liye kuch bhi karega.
14: Rinko?
15: Haan ji.
14: Ye dekh.
15: Aage. Toh chale.
12: Sat Sri Akal biji.
14: Sat Sri Akal pitta.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर
7: मसाला। जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: फ्रॉम द न्यूज रूम टू द स्टूडियो टू द थिक ऑफ

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइसेस।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
0: आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
0: आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.

गए थे। अभी उनको पता चल गया कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट होने के बाद स्टूडेंट पे क्या बीती होगी, क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से झारखंड में इतनी देरी क्यों कर रहे हो आप? वहाँ पे जब चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर जब अटैक किया

0: BJP that is in power, yeah, see, our education budget is literally a laughing matter.
1: One line, ma'am. One line I want to say that.
0: Joke out here. Our Freedom Press Index to my little brother, to my younger brother out here, because I've been a journalist in three different countries, right? We are 151 out of 180 countries. We literally have had no freedom. So the point is that it is the Bharatiya Janata Party.
2: She's asking you about Jharkhand. J-H-A-R-K-H-A-N-D.
0: So Jharkhand ke saath entire opposition is standing. Right? Just because they have not reached there as much as they have reached in the Jantar Mantar does not mean that they are not
3: social media reach jo hai, wo bahut kam hai Jantar Mantar se. Kyunki Jantar Mantar pe jo log gaye the, आज वो इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, लेकिन झारखंड जाके वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाएंगे. मैम को उतनी लाइक्स, इतने कमेंट्स, मैम आपको उतने लाइक्स और कमेंट्स नहीं मिलेंगे झारखंड में.
0: स्किल डेवलपमेंट और एनी फॉर्म ऑफ लर्निंग.
4: Hooda Sariwala, I think you need to listen again to what this young man said, because now there is this new meme saying, what happened darling? Raji is not aesthetic enough for your Instagram story.
3: Jharkhand is not enough aesthetic for you, na? Ma'am, the reason is you guys are not going to Ranchi because Ranchi ki social media reach Jantar Mantar ke barabar nahi hai. Jantar Mantar kyunki Jantar Mantar mein jo log influencer ban gaye hain ab wo bichare utne comment aur likes aapki post pe bhi utne like nahi aayenge jab
0: aap is young debate ke students ka khayal aa raha hai. I think that is the biggest development out here, number one. Number two, everybody stands with the students of Jharkhand, right? Waha pe bachcho ke saath
2: stand out in video call.
0: Not being shock baited.
2: You'll stand with students via video call.
0: Girls are not being hit with danda and lathis on their private parts.
4: Waiting for that to happen before you actually take the flight and go there.
0: Jharkhand government is not going to do that. They are engaging with the students. They're talking to the students.
3: They are not engaging. They are not engaging.
4: Basically, you're saying that the students in Jharkhand, they're actually committing a mistake by being peaceful.
5: Yeah, exactly.
4: Because the only way they will catch people's attention is by engaging.
0: It was the Delhi police that did the entire barbarta, the violence from the Delhi police and the rapid action force people. It was the Bharatiya Janata Party. It was Amit Shah who had asked these people, the Delhi police, to do this violence against the students.
4: Okay, go on. This young lady, go on. Speak. Bolo. Nahin to nahin
6: ma'am, you all are fighting for anti-CJP and CJP. Why are you all blaming BJP? Why are you not doing anything for the Jharkhand students?
0: Whom does the education department belongs to?
7: Excuse me, ma'am.
0: Which
7: ma'am, agar aapki party Jharkhand mein pahunch bhi jayegi, to aap in sab se resume ki accountability ki baat kar lenge.
5: Bring the anti-cheating paper bill.
0: Absolutely.
7: Because what is the cause ki kisi bhi government ke time pe paper leak hote hain, wo outsourcing kar deti hai apni response. आप प्राइवेट एजेंसी को आउटसोर्सिंग कर देते हैं और फिर आप बाद में रेजिग्नेशन हर गवर्नमेंट से मांगते हैं.
0: सो पेपर लीक के टाइम पे झारखंड प्रोटेस्ट इज अ राइट प्रोटेस्ट, राइट? इट इज बाय द स्टूडेंट्स. एवरीबॉडी स्टैंड्स बाय द स्टूडेंट्स. द पुलिस इन झारखंड इज नॉट गोइंग टू डू द सेम वॉयलेंस दैट हैपेंड इन दिल्ली एट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अमित शाह.
7: बिकॉज मैम उन्होंने अप्रोच पे लगा रखा है.
0: नंबर 2, द गवर्नमेंट इज इन एंगेजमेंट विद द स्टूडेंट्स. दैट इज द बेसिक कोर डिफरेंस बिटवीन द झारखंड एंड द जंतर मंतर प्रोटेस्ट.
2: 30 सेकंड्स हर्ष. सिंपल पॉइंट का ये जवाब दीजिए. वो कह रही है कि हमारी सॉलिडारिटी की जरूरत अभी रांची में नहीं है क्योंकि वहाँ लाठियाँ नहीं चल रही हैं, वहाँ पर पैलेट गन्स नहीं इस्तेमाल की जा रही है, वहाँ वायलेंस नहीं
7: है.
2: हर्षवर्धन जी,
0: सबसे लेट इट
2: दैट इज व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग.
3: झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हो ना, यहाँ मत खड़े हुई. झारखंड के छात्रों के साथ खड़े हो, यहाँ मत खड़े.
2: बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए.
3: पद्मजा,
5: एंटी चीटिंग पेपर बिल.
3: पद्मजा, इस पूरी डिबेट में बच्चों ने जो कमाल की बात कही है, मुझे लगता है कोई भी जिन्होंने मुझे भी क्वेश्चन किया हो, ये सब के सब समझ रहे हैं कि ये नेता लोग बेईमानी कर रहे हैं. इन सब को समझ में आ रहा है कि ये वाला स्टेट, वो वाला स्टेट, हमारी पार्टी, हमारा कोलिशन. और जो साहिल ने कहा वो सबसे जरूरी बात, आपको स्टूडेंट के मुद्दों पर बात करने के लिए भी नहीं समय मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है. और क्या जब संसद में इस कानून पर बहस हो रही थी किस पार्टी के किस नेता ने कौन सा सजेशन दिया, आप लोग जरा खोज कर देखिएगा.
5: मैम,
3: क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने,
5: उत्तर प्रदेश
3: क्या चीफ दूसरे नेताओं ने, उन्होंने कोई ऐसा सजेशन दिया कि वो बेटरमेंट हो पाता? असली मुद्दा
5: जंतर मंतर, फ्रॉम जंतर मंतर यू सेड बी प्रॉमिसेस, वी आर विद यूथ एंड व्हेन एंटी एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस फैक्ट आया, आपने दो दिन हाउस में चले दिया.
2: मैम, हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन, हुडा जी, इफ यू आर स्टैंडिंग विद स्टूडेंट्स, यू आर डूइंग

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.